हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। हाजिर हम अपने दैनिक कार्यक्रमों को लेकर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों

और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 में है, प्रस्तुत है आज का चिंतन।

गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। अंधकार है मन का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार और हृदय का भी अंधकार। सच्चाई जब नहीं दिखाई पड़ती है, विशाल हृदय जब स्वार्थवश संकुचित होकर आत्मा को कैद करता रहता है, तब हम अंधकार में जीते हैं। तभी हम मानव यानी जीवों की सर्वश्रेष्ठ रचना के पद से गिर जाते हैं। इसीलिए तलाश होती है प्रकाश की, रोशनी की। हमारे ऋषियों ने उज्ज्वलता के लिए प्रार्थना की है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ये ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ, यही है गुरु। गुरु शिक्षा से हमारे जीवन दीप को प्रज्वलित करता है और हम जगमग कर देते हैं जग को। गुरु का एक अर्थ होता है भारी। जो भारी है वही झुककर कुछ दे सकता है। भारी बादल जल की अपार राशि से झुका रहता है और जगत पर सृष्टि वर्षा की बूंदों से नृत्य कर उठती है। गुरु यानी शिक्षक को भी अपने ज्ञान से भारी होना होता है, तभी वो उढ़ेल सकता है ज्ञान रोशनी की शुभ्र धारा को। हल्का बादल गर्जन तर्जन करता हुआ व्यर्थ उड़ जाता है। वैसे ही बिना ज्ञान के गुरु गुरु हो ही नहीं पाते। हम वस्तुतः होते क्या हैं, कैसे हैं, क्या होना है हमें, ये हम गुरु के ज्ञान रूपी दर्पण और निर्देशन में ही देख पाते हैं, समझ पाते हैं। गुरु ही हमें जड़ चेतन, शुद्धता विशालता, अंधकार प्रकाश, क्षणभंगुरता अनश्वरता के दर्शन कराता है। हमारे विवेक को जागृत करता है और हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, हम समझने लायक होते हैं। बड़ी उहापोह में था अक्खड़ साधु कबीर। उसकी कल्पना उसी को डगमगा रही थी। क्या करे कबीर जब गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। पर तभी कबीर के गुरु द्वारा प्रकाशित हृदय में उत्तर कौंध गया। अरे कबीर अल्हड़, तू भगवान को क्या जानने लगा? भगवान की महत्ता, शक्ति, भगवान का अस्तित्व, किसी चीज का पता तुझे कहां था पगले? गुरु ने ही तो तुम्हें भगवान के बारे में बताया। और तब कबीर की वाणी निस्रित हुई, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु तो ईश्वर से पहले पूजे जाने का अधिकार रखते हैं। गुरु के लिए भी जरूरत बहुत से चीजों की है। महात्मा गांधी ने सच ही कहा था, लंका में बैठा सावधान शिक्षक अपने आचरण से शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। सही शिक्षकों को सावधान होना होगा, ज्ञान प्राप्ति को देने की उदात्त भावना को जगाए रखना होगा। सबसे बड़ा महत्व है गुरु के जीवन और आचरण का। गुरु को अपना आचरण शिक्षा के अनुरूप ढालना होगा, तभी शिक्षा की सार्थकता होगी।

आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:10 होने को हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अनूप जलोटा, चांद साधवानी और साथियों को आप सुन रहे थे इस भक्ति गीत में। आइए सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

चित्रा सिंह के बाद कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और दिलराज कौर की आवाजों में ये भक्ति गीत।

0: और इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का भाग,
1: एपिसोड नंबर 384।

काक भुशुंडी को श्री राम के मुख में प्रविष्ट होने के बाद उनके उदर में अनगिनत ब्रह्मांडों के दर्शन प्राप्त हुए। काक भुशुंडी ने 100 कल्प उन ब्रह्मांडों में बिताए। जब अयोध्यापुरी में श्री राम अवतार का समाचार सुना तो हर्षित हो वहां जा पहुंचे। श्री राम जन्म महोत्सव देखा किंतु फिर भी मोह नहीं मिटा।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का भाग। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। 7:30 पर कार्यक्रम गीत संगीत। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। 8:45 का समय होगा कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी का। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे 9 बजे से। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे से पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। दोपहर 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4 बजे आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक मुख्य समाचार। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी खेती बारी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:32 पर। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। 7 बजे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार का। ऑल टाइम हिट्स आप सुनेंगे 7:30 पर। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम आपकी चाहत। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा रात्रि 10 बजे। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:54 हुए, कुछ ही पल में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिण कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतमस्ति तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबंगालराज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना सप्तवादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं षड्वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य षड् प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरंगतः तीव्रतापतरंगस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग।

प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं खोरठा लोकगीत लाल बिहारी साव और साथियों की आवाजों में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय है थायराइड, कारण, लक्षण और बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर नूरुल इस्लाम, भेंट करता है मोहम्मद अली शबीर अंसारी।
1: श्रोताओं, वर्तमान समय में थायराइड की समस्या एक बीमारी की शक्ल ले चुकी है। आमतौर से महिलाएं इससे ज्यादा ग्रसित नजर आती हैं। वर्तमान समय में जो थायराइड की बीमारी है सामान्य रूप से देखी जाती है आजकल। क्या है इसके कारण, लक्षण और समाधान, इसी मौजू पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नूरुल इस्लाम। इनसे हम जानेंगे थायराइड बीमारी के क्या कारण हैं, उनके समाधान क्या हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि थायराइड की जो बीमारी है ये कितने तरह की होती है।
2: बीमारी को जानने से पहले हम लोग, थायराइड है क्या?
1: जी,
2: थायराइड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है
1: जी,
2: जो हॉर्मोन्स बनाता है हमारे शरीर में
1: जी।
2: और ये थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गर्दन के सामने के हिस्से में होता है
1: जी,
2: जो जिसका काम है थायराइड हार्मोन बना करके ब्लड में रिलीज करना
1: जी।
2: तो मुख्यतः दो तरह के हार्मोन है, एक T4
1: जी
2: और T3
1: जी।
2: ये हार्मोन्स ब्लड में जाते हैं। इस ये हार्मोन कितना बनेगा
1: जी,
2: इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं
1: जी।
2: वहाँ से TSH निकलता है
1: जी।
2: वो TSH कितना निकलेगा उसको कंट्रोल करने के लिए एक हाइपोथैलेमस है, वहाँ से TRH आता है
1: जी।
2: तो ये एक चेन बना हुआ है, TRH ने TSH को निकाला, TSH थायराइड ग्लैंड पे काम करके T4 और T3 रिलीज किया
1: जी।
2: और फिर जब T4 T3 सफिशियंट मात्रा में रिलीज हो गया तो एक नेगेटिव फीडबैक होता है, वो जाता है तो वो जाकर के TSH को रिलीज करना कम किया
1: जी।
2: तो ये एक लूप बना हुआ है, ये एक एक्सिस है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड का
1: जी जी।
2: और यही सिस्टम कंट्रोल करता है कि कितना थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में
1: बन रहा है
2: जी। अब थायराइड हार्मोन शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन
1: जी।
2: इसका काम हमारे ब्रेन से लेकर के शरीर के सभी अंगों पे होता है
1: जी।
2: मुख्य काम थायराइड हार्मोन का है कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर

0: होता है, मतलब जो भी चीज हम खा रहे हैं शरीर में जा रहा है
1: जी,
0: उसका कितना हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट होगा
1: जी,
0: उसको कंट्रोल करता है। अब उसके हिसाब से देखिए तो हमारे शरीर का वजन वेट कैसा होगा
1: जी,
0: ये थायराइड हार्मोन पर निर्भर करता है,
1: करता है जी।
0: हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होगा
1: जी,
0: वो थायराइड हार्मोन पर निर्भर करता है
1: जी।
0: बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट, इसके लिए थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी है। थायराइड हार्मोन हमारे हार्ट पे काम करता है, हमारे हार्ट का रेट कैसा होगा, धड़कन कितना तेज चलेगा, कम होगा, ये सब थायराइड हार्मोन पे डिपेंड करता है। फीमेल में, औरतों में थायराइड हार्मोन जो है उसके फर्टिलिटी पे भी असर करता है, जो मासिक चक्र होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको भी कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन निकलता थायराइड ग्लैंड से है
1: जी,
0: लेकिन उसका शरीर के सभी अंगों पे उसका अपना प्रभाव है
1: जी, जी।
0: अब कम मात्रा में निकले
1: जी,
0: तो बीमारी है
1: जी,
0: और ज्यादा मात्रा में निकल गया तो भी बीमारी है
1: जी,
0: और उसका अलग अलग लक्षण
1: है जी,
0: बीमारी के हिसाब से होता है
1: जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि थायराइड क्या है, सबसे पहले इसको आपने समझाया, और उसका जो चेन क्या है, किस तरह से हमारे शरीर के अंदर वो काम करता है और फिर वो प्रभावित करता है। तो दूसरी बात ये, कितने तरह के होते हैं?
0: हाँ, थायराइड की बीमारी मुख्यतः दो तरह की होती है, या तो हार्मोन कम आ रहा है तो हम लोग उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं
1: जी,
0: और अगर हार्मोन ज्यादा आ रहा है रिक्वायर्ड अमाउंट से एक्सेस में है तो उसको हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: तो पेशेंट जो है वो थायराइड की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, या तो उसका हार्मोन कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, इसका बाहरी लक्षण कुछ दिखता है क्या?
0: हाँ, तो अब हार्मोन कम आ रहा है तो उसका लक्षण अलग है
1: जी,
0: हार्मोन ज्यादा आ रहा है तो उसका लक्षण अलग है। कुछ हम आपको बताते हैं, जैसे हार्मोन कम आ रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म
1: जी,
0: तो मरीज का वेट गेन होता है, मरीज फूलने लगता
1: जी,
0: है। आम बोलचाल में एक सूखने वाला थायराइड बोला जाता है, फूलने वाला
1: जी, जी।
0: तो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो फूलने वाला थायराइड, उसमें शरीर मोटा होते जाता
1: जी,
0: है, शरीर सुस्त हो जाता है, लेथार्जी हो जाता है, पेशेंट का हार्ट रेट कम हो जाता है, पीरियड्स डिले करके आता है, उसका मासिक जो है साइकिल लंबा हो जाता है, यही सब मुख्य लक्षण होते हैं। और अगर पेशेंट हाइपरथायराइड हो गया, उसका हार्मोन ज़्यादा मात्रा में आ गया, तो बिल्कुल उसका उल्टा होने लगता है, वेट लॉस शुरू हो जाएगा, मरीज को गर्मी बहुत लगेगी
1: जी,
0: उसका धड़कन तेज रहेगा, पाल्पिटेशन होता रहेगा, खूब पसीना आएगा, मासिक चक्र गड़बड़ाया हुआ रहेगा। तो हाइपरथायराइडिज्म का एक अलग लक्षण है
1: जी,
0: तो ये मेन कैटेगरी है। यही सब लक्षण देख करके डॉक्टर जो है उसका फिर जांच करते हैं, और जैसी बीमारी आई वैसा उसका इलाज किया जाता है।
1: तो ये भी बात यहाँ पे समझ में आ गई कि थायराइड के कारण क्या है, वो जो हार्मोन का ज्यादा बनना या न कम बनना, और उससे वो थायराइड की बीमारी होती है। और एक चीज और आपने बताया डॉक्टर साहब कि मासिक में भी थोड़ा उसका परिवर्तन दिखता है, कुछ चेंजिंग दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि ये महिलाओं में ये होता है, पुरुष भी इससे ग्रसित होते हैं?
0: हाँ, थायराइड की बीमारी पुरुषों में भी होती है, लेकिन महिलाओं में 5 से 8 गुना होने का चांस
1: ज्यादा
0: ज्यादा है।
1: इसकी कोई वजह खास?
0: ये सब जैसे थायराइड बीमारी का कारण जो आपने पूछा, तो वही ब्रॉड कारण है कि महिलाओं में होती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो कि आपके बनावटी संरचना है उसमें कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन बन रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको बोलते हैं, या ऑटो एंटीबॉडी बोला जाता है, आपके शरीर में ऐसा कुछ बन रहा है जो कि थायराइड हार्मोन को जा करके या तो उसका इफेक्ट कर रहा है। अब उसके इफेक्ट से या तो हार्मोन ज़्यादा आ रहा है या तो हार्मोन कम आ रहा है, दोनों चीज़ हो सकती है। दूसरा एक बहुत जरूरी बात है इसमें जोड़ना कि थायराइड की बीमारी ज्योग्राफिकल भी होता है।
1: अच्छा जी।
0: जो ये आयोडाइज्ड नमक सरकार का जो प्रोग्राम था, तो ये पहाड़ी इलाकों में जो नमक है उसमें आयोडीन की मात्रा की बहुत कमी
1: होती है।
0: अब अगर कोई कम आयोडीन खा रहा है
1: जी,
0: आयोडीन का मुख्य स्रोत हम लोग का नमक,
1: नमक है जी।
0: कम आयोडीन जो है नमक खा रहा है
1: जी,
0: तो उसको नेचुरली हार्मोन उसको कम होगा, हाइपोथायराइड हो जाएगा
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो चल रहा है।
1: हाँ,
0: तो आपको याद होगा कि हमारे क्षेत्र में घेंघा की बीमारी, पुरानी औरतों के गर्दन में बड़ा सा घेंघा, तो ये आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास आयोडीन कम है, तो ज्यादा मात्रा में
1: लेबर उसको मेहनत
0: ज्यादा करना पड़ रहा है, तो वो थायराइड ग्लैंड बड़ा सा गर्दन में मांस हो जाता है, फूल जाता था। तो थायराइड की बीमारी का मुख्य वजह एक एनवायरमेंटल कह सकते हैं या जियोग्राफिकल आप जो करते हैं, और एक आपका बनावटी जेनेटिक फैक्टर जो है उस
1: पर। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके खान पीन पर बात पर डिपेंड करता है कि कुछ ऐसा खा लिया या जो चीज़ नहीं खाना था उसको खा लिया तो हम बीमारी से ग्रसित हो गए। तो यह एक बात सामने आ गई कि आयोडीन की कमी से, जिसमें नमक में जो पाया जाता है, अगर उसका हम प्रयोग कम कर रहे हैं, कम सेवन कर रहे हैं, तो उससे ग्रसित हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं खाना खाने की चीज़ें खान पान में जिसके कमी की वजह से वो बीमारी होती है।
0: इसे दो बीमारी हाइपो और हाइपर दोनों का है, लेकिन एक है ग्वाइट्रोजेंस कहा जाता है, ग्वाइटर ये घेंगा को मेडिकल टर्म में ग्वाइटर कहा जाता है। तो ग्वाइट्रोजेंस सब्सटेंस होता है, आप उसको खाइएगा तो वो आपके थायराइड पे असर पड़ेगा। जैसे कि अगर हाइपोथायराइड है, मतलब जो आम बोलचाल में फूलने वाला थायराइड है, तो ग्वाइट्रोजेंस उसके लिए ब्रोकोली, कैबेज, जो पत्ता गोभी वगैरह होता है, ये सब में ग्वाइट्रोजेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसको कम मात्रा में खाएं, या अगर खाएं तो अच्छे से पका करके धो के खाएं।
1: जी,
0: सोया प्रोडक्ट जो होता है, टोफू आजकल बहुत लोग यूज करते हैं, और ग्लूटेन जो होता है उसमें ऑटो इम्यून को बढ़ाने का मात्रा होता है, और प्रोसेस्ड फूड्स आजकल जो है, फास्ट फूड और सुगरी फूड्स, ये सब थायराइड के लिए नुकसानदेह है। ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी या अल्कोहल लेना, ये सब भी थायराइड का जो है
1: लक्षण की वजह बनती है।
0: हाँ, वजह बनती है।
1: और ये आखिर में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब के, जिसे लोग ग्रसित हो गए थायराइड की बीमारी से, तो जब उसकी दवा की शुरुआत करनी होती है तो उससे पहले आप जांच कराते हैं, तो जांच में वो किस तरह का जांच होता है?
0: जांच खून का जांच होता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसमें हार्मोन का मात्रा देखा जाता है, T4, T3 और TSH, ये तीन जांच हम लोग कराते हैं। तो यूजुअली अगर TSH का मात्रा बढ़ा हुआ है तो वो हाइपोथायराइड की तरफ जाता है, अगर TSH का मात्रा कम है तो पेशेंट हाइपरथायराइड की तरफ जाता है, अगर TSH का मात्रा ज़्यादा है इसका मतलब हार्मोन्स कम आ रहा है, तो पेशेंट को जो है हार्मोन्स हम लोग सप्लीमेंट करते हैं, और अगर हाइपरथायराइड है, शरीर में हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है, तो TSH कम आता है, तो उसमें हम लोग जो एंटी थायराइड ड्रग्स आता है वो सब चलाते हैं। तो फिर जो है पेशेंट को रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ता है, 3 महीने पे 6 महीने पे चेक करके देखना होता है, और पेशेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से दवा का जो है मात्रा कम ज़्यादा होता है।
1: ऐसा है कि है क्या कि जिन चीज़ों के बारे में, परहेज के बारे में आपने बताया या कम सेवन के बारे में बताया, तो उस पर अगर लोग ध्यान रखें तो इस बीमारी से बच सकते हैं?
0: हाँ, आयोडीन का सफिशियंट मात्रा में लिया जाए, आयोडाइज्ड साल्ट ही यूज किया जाए, और ग्वाइट्रोजेन सब्सटेंस जो है जो बताए उसको कम मात्रा में लें, और सही से पका करके उसका उपयोग करें, और ये प्रोसेस्ड फूड जो है, फास्ट फूड है, ये सबसे बचें, अच्छी जीवन शैली अपनाएं, व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, इन सब चीज़ों से जो है काफ़ी हद तक बचा जा सकता है।
1: और अगर जिनको दवा की लेना की ज़रूरत पड़ गई, दवा की शुरुआत अगर उन लोगों ने कर दिया है, तो क्या ये कम्प्लीटली क्योर हो सकता है या दवा हमेशा ज़िंदगी में लेना?
0: कॉज पर डिपेंड करता है, किस वजह से थायराइड हुआ है।
1: जी,
0: अब कभी कभी होता है कि थायराइड अगर सिंगल नोड्यूल होता है, घेंगे का एक नोड्यूल है, तो उसमें ऑपरेशन करा करके अगर उस नोड्यूल को निकाल दिया जाए तो फिर उसमें दवा की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर ऑटो एंटीबॉडी है उसको अगर सप्रेस कर दिया जाए तो दवा की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है।
1: अच्छा, ये भी देखा गया है या देखा जाता है कि दवा के जो उसमें पावर जो होता है, आप लोग जो 50 या 25 वगैरह लिखते हैं, तो कुछ लोग ऐसा है कि कुछ दिनों तक दवा लेते हैं और उसको अपने मन से वो छोड़ देते हैं, तो ऐसा करना कहाँ?
0: वो उसमें डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है, अपने से दवा कम कर देना, बंद कर देना, ये सब जो है
1: हानिकारक। जब तक वो
0: खास करके इसमें हम एक और जोड़ना चाहेंगे कि रिप्रोडक्टिव एज या जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं,
1: जी,
0: अगर उनको है कि नहीं हमको बच्चा प्लान करना है तो उनको तो थायराइड का लेवल अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि उसका असर आपके पेट के अंदर पल रहे बच्चे पे है और उस बच्चे के ब्रेन पे।
1: जी,
0: अगर आप थायराइड का सही कंट्रोल प्रेगनेंसी में नहीं रखेंगे तो जो आपका बच्चा आपके पेट में पल रहा है उस पे असर पड़ेगा, भविष्य में उसको थायराइड की बीमारी हो सकती है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट पुअर हो सकता है। और ये सब खुद से नहीं करना है, प्रेगनेंसी में आप महिला चिकित्सक से सलाह लें, फिजिशियन के देख रेख में आप अपने थायराइड को अच्छे से कंट्रोल कर लें,
1: खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो उस पीरियड में है कि जिनको भी बच्चा जनना है उनको खास ध्यान रखना है इस बारे में कि अगर दूसरी बीमारी हो तो।
0: बहुत सारी महिलाओं में इनफर्टिलिटी, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा उसका एक
1: बड़ा कारण ये
0: बड़ा कारण
1: और लोग इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि इनफर्टाइल भी कभी कभी हो जाते हैं और अगर बच्चे हो भी रहे हैं तो वो कुपोषित होते हैं,
0: कुपोषित मानसिक स्वास्थ्य
1: इसका बुरा असर होता है और फिर बाद में परेशानी झेलना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आपने थायराइड से संबंधित बहुत अच्छी और बेहतरीन जानकारी आपने हमारे साथ साझा किया, उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता इसे सुनकर लाभान्वित से होंगे। आपका बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इस कार्यक्रम के तहत आपने सुना भेंट वार्ता, विषय था थायराइड कारण लक्षण और बचाव। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर नूरुल इस्लाम और भेंटकर्ता थे मोहम्मद अली शबीर अंसारी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम गीत संगीत।

जोनीता गांधी और शाश्वत सिंह को आप सुन रहे थे। इस गीत में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं स्टेबिन बेन की आवाज में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आप सुन रहे थे प्रीत हरपाल को। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे गाया है राज बर्मन और साक्षी होलकर ने।

मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 7:59 हुए हैं। थोड़ी देर में प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारी दिल्ली केंद्र से। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध

0: और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
6: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन मेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
9: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
8: More from our correspondent.
0: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy. The visit to the Food and Agriculture Organization was to strengthen India's commitment to Multilateralism and Global Food Security, where he was honored with the prestigious UN Agricola Medal. Both sides also decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have the century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. He also met enthusiastic Indian diaspora and Italian artists who welcomed him on his arrival in Rome. This is Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
8: India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said, the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She says stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Officials noted that several such channels become highly active in the run-up to major exams, circulating fake paper leak claims, clickbait content and unverified information that trigger panic, anxiety and confusion among students and parents. It was highlighted that many such links redirect users to automated bots and fake groups designed to amplify misinformation. In West Bengal, re-polling has begun for the Falta Assembly constituency in South 24 Paragana's district. Voting, which started at 7 a.m., will conclude at 6 p.m. The Election Commission had ordered a complete re-poll in Falta Assembly constituency, scrapping the voting that was held on 29th of April following multiple reports of irregularities, including voter intimidation, unauthorized presence inside polling booths, and possible tampering with voting machines. A total of six candidates are in the fray, including two independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. BJP's candidate is Dibangshu Panda. Congress has fielded Abdul Razak Molla, while the CPIM has fielded Shambhu Nath Kurmi. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha for the latest update. Kalyan, what's the latest update that you have?
10: Sarah, the latest update is the voting is going on peacefully and no reports of violence or any untoward incident came in. And that this week, this candidate Jahangir Khan declared that he would not contest in the election. And in this situation, the fight is among the candidates of BJP, TMC, BJP, CPIM and Congress. We can expect that peaceful voting trend can continue throughout the day. Sarah.
8: Right. Thank you so much, Kalyan, for that update. Moving on, West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force, BSF, for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. More from our correspondent.
4: Yesterday at the State Secretariat Novarno, Chief Minister Shubhendu Odigari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. West Bengal shares nearly 2,200 kilometers of the 4,000 kilometer India-Bangladesh border, while fencing already covers about 1,600 kilometers, 600 kilometers remain unfenced. Yesterday's handover included the land for 27 kilometers, out of which 18 kilometers for fencing and 9 kilometers for BSF outposts and infrastructure. The Chief Minister assured that more land will be transferred soon, with costs fully covered by the central government and BSF. BSF Director General Praveen Kumar praised the state government, noting that cooperation long needed in border operations is now being received under the new administration.
11: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
8: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal acts at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathineni, said that Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
12: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
8: Mr. Parvathineni's remarks came after Pakistan's representative raised the issue of Jammu and Kashmir at the debate. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he is looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is world's oldest. So the U.S. looks forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. President of Cyprus, Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai last evening on a four-day official visit to India. In a social media post, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranadhir Jaiswal, said, President Christodoulides' visit highlights the growing momentum of India-Cyprus partnership, and both the nations share time-tested and close relations rooted in shared values and strong people-to-people ties. The state visit comes at a moment when Cyprus holds the presidency of the Council of the European Union. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will expand his cabinet today. Rajesh Kumar, leader of Congress Legislature Party, and P. Vishwanathan, Melur MLA, will be inducted into the cabinet. This is the first time after 1967 that the Congress members will join the state cabinet. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground, Eden Gardens, last night to keep playoff hopes alive. Chasing a target of 148 runs in a rain-affected match, Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest 45 runs, while Raman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs, while Chennai Super Kings are eyeing for the fourth spot in the points table. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heat wave conditions today at places over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also likely to prevail during the day over parts of Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Vidarbha. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
13: Thank you, Saira. Prime Minister's visit to Italy is widely noticed by the press today, along with developments in US-Iran conflict. Hindustan Times writes, Rome-Delhi dial-up ties during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart, Giorgia Meloni, at the Colosseum, and a screen grab of the video widely circulated on social media where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap, strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, No Cosmetic Job with Jabs, warns drug regulator. The Indian Express, in an exclusive, writes, "Working in my own grave, how workers are training robots that may replace them." The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, "Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence."

0: intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। रांची पुलिस मुख्यालय में आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा आत्मसमर्पण। राज्य सरकार का सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख। ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए रेट रिवीजन, खेल की जांच और लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने के आदेश। राज्य सरकार और एक्सेलराई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए एमओयू। नए उद्यमियों को मिलेगी सीड फंडिंग और विश्व स्तरीय मेंटरशिप। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। पलामू में पारा 43.4 डिग्री के पार। आज रांची समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी के बीच जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा खिताबी जंग का अंतिम लीग मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। कोल्हान के सारंडा जंगलों में सक्रिय नक्सलियों के एक बड़े समूह ने हथियार डाल दिए हैं। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: झारखंड के नक्सल इतिहास में आज सबसे बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। शीर्ष नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े नक्सलियों के एक बड़े समूह ने सुरक्षा बलों के सामने घने जंगलों में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया है। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े इनामी और महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने साथ भारी मात्रा में आधुनिक हथियार भी पुलिस को सौंपे हैं। आज सुबह रांची पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इनका विधिवत आत्मसमर्पण कराया जाएगा। इस सामूहिक सरेंडर से सारंडा इलाके में सक्रिय नक्सल संगठन की कमर पूरी तरह टूट गई है, जिससे राज्य में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने और रेट रिवीजन के लिए जानबूझकर काम लटकाने वालों के जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने गुणवत्ता से समझौता न करने और विधायकों के शिकायतों पर तुरंत जमीनी कार्रवाई का निर्देश दिया।
4: ग्रामीण विकास में मेनली जिन चीजों की समीक्षा की गई वो मनरेगा संबंधित, अब वो आवास को लेकर के है, आवास की अन्य योजनाएं जो केंद्र के द्वारा सपोर्टेड है, जेएसएलपीएस की गतिविधियां और वाटरशेड को लेकर के यहां पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सभी कामों में हम लोगों ने प्राथमिकता इस बात को देने को कहा है कि जो हमारे ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
2: रांची में आज और कल कुलपति सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस दो दिवसीय सम्मेलन में राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन आज राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार करेंगे, जबकि कल समापन सत्र में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। रांची में आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि कंपनियां सीएसआर राशि का उपयोग फैक्ट्री और माइंस प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए करें। उन्होंने इसकी निगरानी के लिए एक विशेष सेल बनाने की भी घोषणा की।
5: जो सीएसआर का पैसा दूसरे जगह यूज करता है, गर्दा हम खाते हैं, संकट हम झेलते हैं, जमीन हमारी जाता है और इसका नियंत्रण जो है कोई और करता है और इस पैसा को दूसरे देश में, दूसरे राज्य में खर्चा किया जाता है। लेकिन हमको राज्य के हित में भी देखना है और उसको कैसे बेहतर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अधिक से अधिक पैसा कैसे हम उस इलाके में खर्चा कर सकते हैं जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ उद्योग है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज जो है पहला मीटिंग किए हैं।
2: बैठक में यूनिसेफ, टाटा फाउंडेशन और सीसीएल के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा वन आधारित और सर्कुलर इकोनॉमी के अवसरों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की सोच के अनुरूप है। इस अवसर पर प्रधान सचिव अबू बकर सिद्दीकी और GIIDCO के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से आगामी 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड इलेक्टर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अपने बूथ पर जाकर नाम की जांच कर सकेंगे। उधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और जिला प्रशासन के सहयोग से जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में एक विशेष मतदाता और आधार कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। चैम्बर अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों और आम लोगों को चुनावी व पहचान दस्तावेजों से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था।
6: तैयार का मैपिंग हो रहा है, वोटर आईडी और आधार जो है नए, जिसको बनाना है नए बन रहे हैं। अगर कुछ करेक्शंस है तो करेक्शंस हो रहे हैं। 2 साल बाद आज हम लोग ने ये कैंप लगाया है और हमारे मेंबर्स की और लोगों की डिमांड थी कि वोटर आईडी का करेक्शन कराना है। आधार में बहुत से करेक्शंस है और खासकर मैपिंग जो है वो बहुत जरूरी है। जो पहले किसी कंस्टिट्यूएंसी में थे, अभी चेंज हो गया है उनका कंस्टिट्यूएंसी, तो अभी SIR मैपिंग कराना मस्ट हो गया है।
2: सीबीआई की धनबाद टीम ने GCST के गिरिडीह कार्यालय में 15 घंटे लंबी छापेमारी की है। टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया है। हजारीबाग पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित टीपीसी उग्रवादी दुर्गा बेदिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि 9 मामलों में फरार चल रहे इस उग्रवादी को गिद्दी थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में कोर्रा थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर अवैध देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां कल पलामू 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। रांची समेत 16 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार आज 5 जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज जमशेदपुर एफसी जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओडिशा एफसी के खिलाफ अपना अंतिम लीग मुकाबला खेलेगी। लीग टाइटल की दौड़ में बने रहने के लिए जमशेदपुर एफसी को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। टीम फिलहाल 12 मैचों में 21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के हवाले से लिखा है, राज्य में 4-5 एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज सबसे बड़ा सरेंडर, 25 नक्सली डालेंगे हथियार। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में। दैनिक जागरण लिखता है, 7 ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़ेंगे 20 अतिरिक्त कोच, 2 और कतार में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। रांची पुलिस मुख्यालय में आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा आत्मसमर्पण। राज्य सरकार का सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख। ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए रेट रिवीजन, खेल की जांच और लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने के आदेश। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए एमओयू। नए उद्यमियों को मिलेगी सीड फंडिंग और विश्व स्तरीय मेंटरशिप। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। पलामू में पारा 43.4 डिग्री के पार। आज रांची समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी के बीच जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा खिताबी जंग का अंतिम लीग मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 8:44 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी सुन रहे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं केके और तुलसी कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इरशाद कमिल ने, संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने, फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल को आप सुन रहे हैं फिल्म दबंग में। इस गीत को लिखा है फैज अनवर ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं बादशाहो फिल्म का गीत तुलसी कुमार की आवाज में।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 8:59 हुए हैं। आइए अब आपको ले चले हमारे मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

फिर से आप सभी का बहुत स्वागत चित्रलोक कार्यक्रम में। पुष्पा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं जावेद अली की आवाज।

दोस्तों, आज जन्मदिन है प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सफल फिल्में दी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी जैसे सफल फिल्मों का निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने वीर ज़ारा, धूम, श्रृंखला, चड्डे इंडिया, एकता टाइगर और बंटी बब्बी जैसे फिल्मों का लेखन और निर्माण किया। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा को विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा पर, और सुनते हैं आप ये गीत। आपको ये भी याद दिला दें कि ये आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा सुबह और रात 9:30 पर।

0: रब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजें थी, जयदीप साहनी के बोल थे और सलीम सुलेमान की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ऋत्विक तलाशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से सजाया। एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

वीर ज़ारा फिल्म का गीत उदित नारायण के आवाज में आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर के ये बोल थे। दोस्तों, आज विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस है। दुनिया में हर जगह लोगों की भाषा बोली अलग है, खान पान पहनावा सब अलग है, उत्सव अलग ढंग से मनाए जाते हैं। हर जगह की संस्कृति और सभ्यता अलग होते हुए भी इन सब के बीच एक बात है जो सबको जोड़ती है, वो है इंसानियत और प्रेम। सब कुछ अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने की भावना, यही सुंदरता है। हमारा देश तो विविधताओं का अनुपम और अद्भुत संगम है। संग अच्छध्वम संग वदध्वम सम वो मनांसि जानताम। साथ चलें, साथ बोलें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मन को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, सद्भाव और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। ये गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है मेरे बाप पहले आप।

0: उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मेरी बाप पहले आप। दोस्तों आज आतंकवाद विरोध दिवस भी है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाने का उद्देश्य कि हमें एकता भाईचारा और आपसी विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा ये देता है। आज का दिन आइए हम सभी मिलकर हिंसा और नफरत से दूर रहकर प्रेम सद्भाव और शांति का संदेश फैलाएं, क्योंकि जब समाज और देश सुरक्षित रहता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। और अब एक संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ और समृद्ध रहिए। और इजाजत दीजिए सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज की फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है प्यार सर्वकालिक होता है सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: की शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: आज के मेहमान।
1: आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

एक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग।

0: हैदराबाद के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग, स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार जोहार। इस एक घंटे के सफर में आपके साथ मैं अंजना। सफर खूबसूरत हो, संगीतमय हो, तो सफर तय करना आसान हो जाता है। इस संगीतमय सफर में कुछ पड़ाव ऐसे भी होंगे जहां होंगी देश दुनिया की बातें। फिलहाल चलते हैं गीत की ओर।

श्रोताओं, आइए जान लेते हैं आज के मौसम का हाल। मौसम विभाग के पूर्वानुमानुसार आज धुंध वाली धूप होगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान होगा 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान होगा 25 डिग्री सेल्सियस। श्रोताओं, गर्मी के तापमान से लोगों का हाल है बुरा। कहीं पानी की समस्या है तो कहीं बिजली की, लेकिन एकदम से हर समस्या का समाधान

नहीं हो सकता। किसी भी समस्या से निपटारा के लिए प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। आगे की सोच कर किया गया हर काम काफी हद तक सही हो सकता है। उदाहरण के लिए, आज पूरी दुनिया में पानी का संकट गहराया हुआ है, गर्मी भी बहुत अधिक बढ़ गई है, जो काफी चिंता का विषय है। पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है, ये जानते हुए भी मानव विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करता आया है। आज हम छुट्टियों में गांव की ओर भागते हैं, प्रकृति की ओर भागते हैं, ताकि प्रकृति के साथ सुकून के कुछ पल बिता सके। जरूरत है प्रकृति को बचाने की, पर्यावरण को बचाने की।

खूबसूरत सुबह का और ढलती हुई शाम का एक साथी होता है जिसे हम सुकून की चाय कहते हैं। ताजगी का एहसास लिए एक प्याली चाय मिल जाए तो सुबह की भाग दौड़ आसान हो जाती है। शाम की थकान मिटानी हो तो चाय की याद आ ही जाती है। कुछ भी हो, चाय पे चर्चा रिश्तों को बांधे रखता है। श्रोताओ, आज है विश्व चाय दिवस। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है विश्व भर में चाय के लंबे इतिहास और इसके गहन सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में 2005 से विश्व चाय दिवस मनाया जा रहा है। वैसे चाय की उत्पत्ति 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। वर्तमान में इसकी खेती बहुत ही सीमित क्षेत्रों में होती है। इससे 13 मिलियन से अधिक लोग, जिसमें छोटे किसान और उनके परिवार शामिल हैं, ये अपनी आजीविका के लिए चाय उद्योग पर ही निर्भर हैं। श्रोताओं, इसका उत्पादन और प्रसंस्करण लाखों परिवारों को रोजगार प्रदान करता है। चाय क्षेत्र अरबों डॉलर का उद्योग है जो अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देता है और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों में योगदान देता है। श्रोताओं, चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है और पानी के बाद दुनिया में सबसे अधिक सेवन किया जाने वाला पेय है। दुनिया भर में कई समुदायों में चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। यह न केवल एक व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है, बल्कि आतिथ्य परंपरा और सामाजिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। चाय की कई किस्में होती है जो ऑक्सीकरण और किण्वन की अपनाई गई तकनीक के अनुसार भिन्न होती है। खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पहले कई देशों में यह दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। इसके बाद से विश्व चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। चाय की खोज चीन में हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 2737 ईसा पूर्व में चीनी सम्राट शेन नंग द्वारा पानी उबालने के दौरान एक जंगली चाय के पेड़ की पत्ती उस पानी में गिर गई थी, जिससे पानी का रंग और स्वाद बदल गया। वहीं से चाय की शुरुआत हुई। शुरुआत में इसे औषधीय पेय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चाय के फायदे तो हैं ही, लेकिन नुकसान भी है। अगर चाय में शक्कर और दूध डाल दिया जाए तो यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अत्यधिक मात्रा में या खाली पेट चाय पीने से भी एसिडिटी, नींद में कमी और शरीर में आयरन के अवशोषण में बाधा जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद भी चाय पीने से बचना चाहिए। अत्यधिक चाय से पाचन तंत्र में भी असर होता है, जिस कारण पेट संबंधी अन्य बीमारियां भी हो सकती है। श्रोताओं, इसलिए चाय का सेवन सीमित मात्रा में करें, मौसम के अनुसार करें। ग्रीन टी, ब्लैक टी, पुदीना चाय, लेमन टी, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये चाय फायदेमंद होते हैं, लेकिन बिना शक्कर के, जो ऊर्जा और ताजगी का एहसास भी कराते हैं।

श्रोताओं, आइए जानते हैं आज का इतिहास। 21 मई 1981 को पियरे मोरो फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। 1994 में दक्षिणी यमन द्वारा उत्तरी यमन से अलग होने की घोषणा हुई थी। 21 मई 1996 को प्रसिद्ध शीतल पेय कंपनी पेप्सी ने विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन फिल्म बनाने की घोषणा की थी। 1998 में 32 वर्षों तक लगातार इंडोनेशिया पर शासन करने वाले राष्ट्रपति सुहार्तो ने त्यागपत्र दिया था। आज ही के दिन 2003 में विश्व के 190 से भी अधिक देशों में तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को जिनेवा में मंजूरी दी गई थी। 2008 में आज के दिन भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि कर्ज पर रोक लगाने संबंधी अपने सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस किया था। रिजर्व बैंक ने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के HDFC बैंक में विलय प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आज के दिन 2008 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना के तहत 15 देशों की वायुसेनाओं के 90 अधिकारियों का एक साझा टेबल अभ्यास हैदराबाद में प्रारंभ हुआ था। आज ही के दिन 2008 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी विलिस ई लैंग का निधन हुआ था। 2010 में आज ही के दिन उड़ीसा तट पर बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना के जंगी जहाज रणवीर से भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।

और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आइए आपको बता दें, आज के दिन जिन महान शख्सियत का जन्म हुआ यानी 21 मई को जन्मे व्यक्तियों के बारे में भी बता दें। 1940 में नरेश भारतीय का जन्म हुआ था। ये भारतीय मूल के हिंदी लेखक जो ब्रिटेन से हैं। 1931 में शरद जोशी का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध व्यंगकार रचनाकार हैं। 1930 में मैलकम फ्रेजर का जन्म हुआ था। 1857 में सर सुंदरलाल का जन्म हुआ था। 21 मई को जिनका निधन हुआ था वे हैं 1989 में जानकी देवी बजाज, 1991 में राजीव गांधी, 1960 में गामा पहलवान का निधन हुआ था, 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ था।

श्रोताओ, पुराने जमाने में दूर की खबरें लोगों तक नहीं पहुंचती थी। फिर दौर आया संदेश वाहकों का, लेकिन इनकी सीमा क्षेत्र सीमित थी। वक्त ने करवट ली। पत्र, पत्रिका और अखबारों द्वारा समाचार पत्र और कुछ जानकारियां लोगों तक पहुंचने लगी, लेकिन इनकी अहमियत शिक्षित लोगों तक ही थी। फिर जन जन तक पहुंची तरंगों के जरिए कई आवाजें। ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। इन तरंगों की खोज की हेनरिक हर्ट्ज ने। 1895 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक गुग्लियेल्मो मार्कोनी ने इसे एक व्यवहारिक तकनीकी रूप दिया और लंबी दूरी तक वायरलेस सिग्नल भेजने में सफलता प्राप्त हुई। 1901 में मार्कोनी ने अटलांटिक महासागर के पार पहला सफल वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिट किया और 1906 में रेजिनाल्ड फेसेंडेन ने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से पहला ऑडियो, जिसमें वायलिन की धुन और भाषण थे, प्रसारित किया। भारत में रेडियो की शुरुआत हुई 1920 के दशक में। देश में पहली बार 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब और मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब द्वारा रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। इसके साथ ही जन जन तक वाणी पहुंचाने की शुरुआत हुई। 1936 में सरकारी अधिग्रहण के बाद इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1942 में पहली बार महात्मा गांधी ने अपनी बातें रेडियो द्वारा जन जन तक पहुंचाई। आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो को 1957 में आधिकारिक रूप से आकाशवाणी नाम दिया गया। समय के साथ रेडियो में परिवर्तन हुए। गली मोहल्ले या चौक चौराहों में जब भी रेडियो की धुन सुनाई पड़ती, एक पल के लिए कदम रुक जाते थे। जन जन की वाणी आकाशवाणी देश के हर कोने तक पहुंची। विकास के पथ पर चलते हुए आज हम डिजिटल युग में पहुंच गए हैं, लेकिन इस तकनीकी युग में रेडियो आज भी प्रासंगिक है। आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मनोरंजन के साथ साथ समाचारों और ज्ञानवर्धक जानकारियों का प्रसारण होता है। स्वास्थ्य हो, खेल हो या विशेष कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचानी हो कोई भी बात, आकाशवाणी के माध्यम से इसे जन जन तक पहुंचाया जाता रहा है। आकाशवाणी हर दिल की धड़कन है। यह विविध कार्यक्रमों के जरिए जोड़ता है खास पहचान को आमजन से। 90 वर्षों का ये सफर, खूबसूरत वादियों और पगडंडियों का सफर, विभिन्न रंगों में ढलकर आज हमारे हाथों में डिजिटल रूप में मौजूद है। मोबाइल ऐप के माध्यम से कहीं भी कभी भी पहुंच रही है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।

श्रोताओं, अब कुछ खबरें अखबारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष इटली के जॉर्जिया मेलोनी के साथ की बैठक। भारत इटली निवेश और तकनीक में करेंगे मदद।

झारखंड में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के 6 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सुबह से तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, जबकि कई इलाकों में दोपहर बाद आंधी, तेज हवा और हल्की बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को गढ़वा राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा पलामू में 43.4 डिग्री, जमशेदपुर में 41.8 डिग्री, बोकारो में 41.2 डिग्री, सरायकेला में 41.1 डिग्री और चाईबासा में 40.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। रामगढ़ में भी पारा 40 डिग्री पहुंच गया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हुई। सबसे अधिक 6.6 मिलीमीटर बारिश सरायकेला में रिकॉर्ड की गई। रांची में दिन भर तीखी धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। यहां तापमान 38.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में गर्मी, उमस, आंधी और बारिश का मिलाजुला असर जारी रहेगा।

केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक बस और ट्रक खरीदने वालों को सस्ता ऋण देने की व्यवस्था लागू करने जा रही है। सरकार की यह रणनीति ईवी नीति में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। इससे निजी परिवहन कंपनियों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को बड़ा फायदा मिल सकता है। यह योजना 6 महीने में लागू की जा सकती है। एक खबर चाय दिवस पर विशेष। चाय उत्पादन में फिर इतिहास दोहराने की तैयारी में झारखंड, फिर महकेगी चाय की खुशबू। डेमोटाड़ में शुरू हुआ उत्पादन। झारखंड की टोपोग्राफी चाय उत्पादन के अनुकूल है। राजधानी में कभी 2000 एकड़ से अधिक में चाय की खेती होती थी। नामकुम क्षेत्र में चाय बगान नाम का इलाका आज भी है। कोलकाता का एक व्यापारी परिवार यहां चाय की खेती कराता था। नामकुम के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी इसकी खेती होती थी। एक बार फिर झारखंड में चाय उत्पादन की संभावना खोजी जा रही है, इस पर काम हो रहा है। नेशनल टी बोर्ड ने झारखंड में चाय की खेती की अनुशंसा भी की है। टी बोर्ड के वैज्ञानिकों की अध्ययन रिपोर्ट के बाद हजारीबाग और गुमला जिले को इसके लिए उपयुक्त माना गया है। टी बोर्ड की एक विशेषज्ञ टीम ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वहां की मिट्टी, मौसम, ऊंचाई और पानी के बहाव का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया है, जिसके बाद यहां व्यावसायिक पैमाने पर चाय उत्पादन को हरी झंडी दी गई है। नेशनल टी बोर्ड ने झारखंड में चाय उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति पाई है। यहाँ की मिट्टी अम्लीय है। चाय के पौधे के लिए 4.5 से 5.5 पीएच मान वाली अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। टी बोर्ड ने पहले चरण में हजारीबाग और गुमला को सबसे उपयुक्त पाया है। कुल 65 एकड़ भूमि पर चाय लगाने की योजना बनाई जा रही है।

श्रोताओं, खुशखबरी खेल से भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट की प्रतियोगिता सुपर शतरंज क्लासिक के छठे दौर में रोमानिया के डिएक बोगदान डेनियल से भिड़ेंगे और ड्रॉ के अपने सिलसिले को रोकने की कोशिश करेंगे। जर्मनी के विंसेंट कीमर 5 दौर के बाद एकल बढ़त बनाए हुए हैं। उनके बाद नीदरलैंड के अनिश गिरी और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी फेबियानो कारुआना और प्रज्ञानंदा का नंबर आता है। इन सभी के 3-3 अंक हैं।

बीसीसीआई ने 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीजन के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इस सीजन में पुरुष और महिला वर्ग के विभिन्न आयु समूहों में कुल 1788 मुकाबले खेले जाएंगे। खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट, रिकवरी और युवा प्रतिभाओं को ज्यादा मौके देने के उद्देश्य से कई अहम बदलाव किए गए हैं। रणजी ट्रॉफी और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी दो चरणों में आयोजित होंगी, जबकि कई जूनियर टूर्नामेंट अब T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक और बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। 41 वर्षीय स्टार फुटबॉलर को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए पुर्तगाल की टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही रोनाल्डो रिकॉर्ड 6वीं बार फीफा वर्ल्ड कप खेलते नजर आएंगे। रोनाल्डो के प्रशंसकों को इस वर्ल्ड कप में एक बार फिर उनकी और लियोनेल मेसी की ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि यह दोनों दिग्गजों का आखिरी फीफा वर्ल्ड कप हो सकता है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित HDCA ऑल इंडिया फिडे रेटिंग क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता बुधवार को संपन्न हो गई। विनोबा भावे वीवी के मल्टीपर्पस हॉल में आयोजित प्रतियोगिता में देश भर के 272 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेताओं के बीच कुल 4.50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि व मोमेंटो बांटे गए। प्रतियोगिता में अनुपम विश्वास

श्रोताओं, जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने इस दुनिया को खुद को काबिल बना लिया है। एक छोटा सकारात्मक विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है। अपने लक्ष्यों के प्रति जोशीले और जुनूनी बने। आज का संघर्ष ही कल की सफलता की नींव होती है। तो आज का सफर यहीं तक। अब हेलो हजारीबाग से दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। 10:59 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए कुछ पल का इंतजार। तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम है। अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ ये गाना। संगीत लेस्ली लेविस और हरिहरन का, एल्बम का नाम आत्मा।

अलीशाज लव नोट्स ये एल्बम का नाम है, अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटा का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान, सुनीता राव और साथियों की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना, अनु मल्लिक का संगीत, फिल्म का नाम अशोका।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, साहिर होशियारपुरी के ये शब्द हैं, संगीत जगजीत सिंह का और एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की।

0: है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषा है उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में, तो सुनिए आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।
1: तने प्रेम करूं छो छो छो, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालो बाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनु प्यार करना तेरे जियो नयो लवड़ी ओ साथी हो निबली।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इंग्लिश फिल्म का गाना सुनिधि चौहान स्वानंद किरकिरे नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें स्वानंद किरकिरे के बोल संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: जरा सा सीधो जालिमा मर जियो।
1: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
2: मैं उठते ही लो अरे पुरवा के झोंकवा में आई।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाजा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं जिसे पाके तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफर तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन जमाना ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको खत लिखना यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार, इकरार और स्वीकार से

और तप्रोत है जहाँ खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है यह। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सके तो जरूर बताइए।

वक्त अपने चरम पर है, बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं, क्या किसी का साथ होता है, या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हवा के साथ साथ। जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता। रांची में एक साथ 27 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष डाले हथियार। रांची में समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। आंगनबाड़ी भवन निर्माण, 100% टीकाकरण और अपार आईडी कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जेटेट के अभ्यर्थियों को जैक ने दी बड़ी राहत। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर अब 2 जून की गई। और रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी। उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए खुलेगा नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और रांची में कल से शुरू होगा देश का बड़ा खेल महाकुंभ। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज लाल आतंक के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता मिली है। रांची पुलिस मुख्यालय में आज एक साथ रिकॉर्ड 27 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 25 प्रतिबंधित भाकपा माओवादी और 2 जेजेएमपी के सदस्य हैं। सरेंडर करने वाले 8 शीर्ष नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इनके खिलाफ 426 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उग्रवादियों ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष 5 इंसास राइफल सहित भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और जिंदा कारतूस भी सौंपे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये भटके युवा मुख्य धारा में लौटे हैं।
1: आज झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे।
0: कृषि विभाग रांची की ओर से नगड़ी प्रखंड में जिला स्तरीय किसान मेला सह कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने हिस्सा लिया, जिन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीजों, जैविक खेती और सरकारी अनुदान योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृषि एवं उद्योग विभाग के सभापति आदिल अजीम ने शिरकत की। रांची में समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों को नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने, पोषण ट्रैकर ऐप के इस्तेमाल और अपार आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए गए। रांची में जिला जज एवं स्वच्छता समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए गए। सीबीआई की धनबाद टीम ने सीजीएसटी के गिरिडीह कार्यालय में 15 घंटे लंबी छापेमारी की है। टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया है।
2: जीएसटी के 2 पदाधिकारी मिल करके जांच के नाम पर और एनओसी के नाम पर पैसा की मांग कर रहा था। इस सीबीआई के नंबर पर हम भी बात किए, उसके बाद रिपोर्ट को लिखवाए, उसके बाद जो भी हुआ रिकॉर्ड हुआ, जांच हुआ, आया देखा और जो भी कुछ हुआ देने की जो बात था, तो आज हमने 50,000 रुपया दिए, जो आज पकड़ा गया है।
0: झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। परिषद ने उम्मीदवारों की मांग और विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। जैक द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अब अभ्यर्थी जेटेट के लिए आगामी 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कुल 30 एजेंडों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें विश्वविद्यालय में शोध और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन खोलने का फैसला शामिल है। भारतीय सेना ने 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना यानी TES 56 कोर्स के लिए योग्य युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 12वीं कक्षा और JEE मेंस 2026 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जमशेदपुर की जुगसलाई थाना पुलिस ने बीते 15 मई को हुई फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि SSP के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच और CCTV फुटेज के आधार पर छापेमारी कर इन आरोपियों को दबोचा।
3: तो ये 6 लोगों की कुल मिलाकर इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं उनमें 4 अवैध देसी पिस्टल है, 5 जिंदा गोलियां हैं, 1 खोखा, 3 खाली मैगजीन, जो गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी उस घटना में उसको भी बरामद कर लिया गया है और 6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 136 अंक बढ़कर 75,454 पर और निफ्टी 72 अंक बढ़कर 23,731 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कोडरमा जिला इन दिनों भीषण लू और तपिश की चपेट में है। जिले में सुबह 10 बजते ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। भीषण गर्मी के कारण स्थानीय नदी और जलाशयों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर राजीव कांत पांडे ने श्रोताओं से अपील की है कि वे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें।
4: कि अगर जरूरी ना हो तो आप भारी धूप में ना जाएं। यदि आपको किसी कारण से निकलना ही होता है तो सारा प्रोटेक्शन ले, जैसे कि कोई गमछा बांध के रखे, हो सके तो जो ढके हुए वाहन है उनका प्रयोग, बाइक और टू व्हीलर हो सके तो अवॉइड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें, बार बार पानी पिए, इलेक्ट्रोलाइट साथ में रखें, अपने यूरिन के कलर को वॉच करते रहें।
0: राजधानी रांची में कल से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव SK पांडे ने बताया कि इस महाकुंभ में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी भाग लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता। रांची में एक साथ 27 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष डाले हथियार। रांची में समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, शत प्रतिशत टीकाकरण और अपार आईडी कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जेटेट के अभ्यर्थियों को जैक ने दी बड़ी राहत, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर अब 2 जून की गई। रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी, उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए खुलेगा नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और रांची में कल से शुरू होगा देश का बड़ा खेल महाकुंभ, 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: एक तो ये और एक दूसरा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है। गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी, और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती लेकिन वो बातें हमें सबसे ज्यादा ठंडक देती है। चलिए धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग, इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आर डी बर्मन के गाने क्या का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है। बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्मपत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छुमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक हाँ एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ दो मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज़, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

भाई बहन फिल्म का गाना, इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्म आया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के

सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी, लेकिन एक सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है, तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है, तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, हेमंत कुमार और लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी

बेटी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता, और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है, और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स

0: इसका प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: इंडिया इज रिसेंटली लॉन्च,
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने

0: नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
2: चाय, ये चाय।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जनकल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए परिणामोन्मुख कार्य की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समयबद्ध परीक्षा और रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण, शोध, नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंकेज को मजबूत करने का आह्वान किया। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ 426 मामले दर्ज हैं। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
1: मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी

0: जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
1: कोल्हान के सारंडा में सक्रिय 25 से अधिक नक्सलियों के एक साथ समर्पण करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
2: सरकार की नजर, सरकार की आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर नामकुम स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे एवं सुप्रियो भट्टाचार्य भी उपस्थित थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की मिसाल रहा है। झारखंड राज्य में उनका योगदान अमिट है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने आज व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 9 मामले दर्ज किए गए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक अरविंद कुजूर ने बताया कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों की सूचना देने वाले लोगों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। भारतीय एथलेटिक्स संघ के निर्देश पर झारखंड एथलेटिक्स संघ और खेल विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 22 मई से 25 मई 2026 तक रांची में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और इसके प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो तथा एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जापान के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप
2: चंचल जी? और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भाई देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहाँ अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने।
2: लेकिन इस वजह से वहाँ पे भी गर्मी होने शुरू हो गई जी, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहाँ रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर,
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
2: हाँ, फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
2: वो उन्हें बताएं अपना।
1: हाँ,
2: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सुमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता है, इनकी सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई,
2: हाँ,
1: चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
2: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए कि गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय चाहिए। चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय होती है, दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो है वो अपना आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में
2: बात करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
2: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
2: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
1: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परम्पराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
2: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपड़े का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान असुनपण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो, और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वास पूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
0: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बाबलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
1: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
0: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
1: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए,
1: चाय मिल जाए ना, तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। हाँ। ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है।
1: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, चाय बस चाय नहीं पिलाई, तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि एक लत

0: होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना, वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
1: सच में बहुत ज्यादा।
0: और पौराणिक कथाएं है ना, वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी, ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
1: वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं, चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े सब हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे हमें मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती है फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भिन्नी भिन्नी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: भाई हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कहते ना तो
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं.
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसे कैसे होगा.
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी.
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की. 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया. और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया.
1: बिल्कुल.
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था. ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई.
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे. और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है. और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था. तो भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है.
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देशों में होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं. इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है. लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है. अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी सी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं.
1: बिल्कुल. और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है. अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं. कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें.
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला.
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो.

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की,
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है, ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं, तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी, जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा न वा,
0: क्या बात है
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी हरी चाय जिसे कहते हैं उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं, भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पति के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना, मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
0: चाय की प्याले भी करवा लिए जाते हैं।
1: कब चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिस पर लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो, सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: ओहो, क्या बात है भाई,
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
1: एक और मैच होता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी, सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: पे हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षुता जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जुड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है, जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत

0: लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं?
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जैसे किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर, तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए, तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया, जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको। और सोशल फोबिया, जैसे कि सोशल, जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको, वो होता है। और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा, तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: इस जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती है कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारी श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरी अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आँखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़े। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल। और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन ले गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती
1: के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए परिणामोन्मुख कार्य की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण, शोध, नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंकेज को मजबूत करने का आह्वान किया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जमशेदपुर में कांग्रेस ने जिला कमेटी के नेतृत्व में साक्षी आम बगान से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। चतरा के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सप्रशिक्षण भवन हॉल में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के लगभग 550 किसानों को बदलते मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक फसल अपनाने की सलाह दी गई। उन्हें बताया गया कि ऊपरी भूमि पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती लाभकारी साबित हो सकती है। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम सिंहभूम जिला में चाईबासा जमशेदपुर मार्ग पर कुज्जू पुल के पास हुए सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्वी सिंहभूम जिले के पुटका थाना क्षेत्र के रोलाडी गांव निवासी 30 वर्षीय सूरज महाकुड़ के रूप में हुई है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री और उससे अधिक पहुंच गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में

0: कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे?
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम, यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है?
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है, उसमें सखियों की बात होती है और सखाओं की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद फिर?
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके, और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंटर सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहलिम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करिए, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: चंदना में फिर तेरी कहानी याद आई, काले बोले दिल में सनम की सूरत, आंखों में आके दे मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है, आजकल तो पक्के की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्का लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पक जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं कामकाज, क्योंकि रेडियो तो कैसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो कामकाज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सब अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम, अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये है की हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी, जो हमारे कांगड़ा में हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ, जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ,
1: रहते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं?
1: इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अभी जब मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं, हमको गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
0: जी
1: धर्मेंद्र हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला, गुजरात की
1: जटिल कला है। जटिल कला है जो सो कोई नहीं कर सकता, सीखने में टाइम लग जाता है। और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुसियान है या कोई तसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे ड्राइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकले और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
0: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है?
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी।

0: में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन मा उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
0: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
0: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
0: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
0: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में, और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
0: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
0: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
0: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
0: जी,
1: तो शुरू करें?
0: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
0: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी,
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी,
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरुंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मात्र

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़ी से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिल

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से

0: किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।
2: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
3: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश।

0: रंगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं भाई,

0: साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों, क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
0: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर।

0: नाचे मोर भाई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भाई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
3: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
3: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
3: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
3: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
6: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
7: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
8: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
7: हाँ,
8: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
7: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
8: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
7: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
8: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काट।
9: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
8: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
6: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
10: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
7: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
8: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
6: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे।
8: अरे अटकू भाई, वो देख, कटहल का एक पेड़।
11: अरे वाह, क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
6: वो उसे काटने लगे।
9: काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
7: अच्छा ठीक है,
8: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
6: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
12: क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
8: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
6: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
0: अरे वाह अटकू मटकू,
6: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
13: पेड़ हमारे दोस्त हैं। जीवन में हरियाली लाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
14: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं को गंभीरता से लिया गया। इस बैठक में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और परिचालन सुरक्षा में सुधार करने पर भी जोर दिया गया। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। धोरवा स्थित निर्वाचन सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने आज व्यापक अभियान चलाया। उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में जिले के कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की गई। इस अभियान के दौरान 9 मामले दर्ज किए गए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में एक अज्ञात मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मजदूर की मौत लू लगने की वजह से हुई है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने 23 और 24 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
15: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है यह कार्यक्रम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान मनो सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के प्रकाश के दिन से जुहार। और आज हमारे साथ हथिन यशविंद्र भाई, तो तोहरो जुहार, स्वागत हो।
7: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के मापन से जुहार, प्रणाम करो। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल प्रकाश भाई, तोहरो भी मनने से जुहार।
6: और यशविंद्र भाई, देखा कि हमके जितना भी किसान भाई बहन सब हथिन अपन कार्यक्रम किसान वाणी में, सब अपन खूबी, अपन विशेषज्ञ के राय और किसान सबके मेहनत के जो है उनकर बातचीत के अपन कार्यक्रम में शामिल करो, ये उनका ई कार्यक्रम से लाभ हुआ है ना। आज हम बात करें भाई कि हर तरह के किसान अपन खेत बाड़ी से जुड़ल हथिन, बड़ किसान हथिन चाहे छोट किसान हथिन या सीमान किसान हथिन, उस सब किसान के कहा भाई कि कहीं न कहीं खेत बाड़ी से जुड़ल है, तो वो खेत के बचावे वास्ते और खेत के देखभाल करे वास्ते कहीं न कहीं एक जागरूकता या तो कहल जा सको है कि एक अस्थायी योजना जो है हमेशा बनावल जा है, जेकर से किसान जागरूक हो पारो है कि फसल हो गलो, माटी हो गलो, चाहे खेत के सुरक्षा हो गलो, ओकर वास्ते कम से कम किसान जो है जागरूक रहथिन ताकि अपन खेत बाड़ी के बचा सको।
7: बिल्कुल, देखो जैसे कहा है किसान भाई बहन के जैसे जे बोल किसान भाई बहन जैसे भी तो बतेला कि किसान भाई बहन जे अपन अभी समय आ गया है कि किसान भाई बहन अच्छी तरह से जो खेती बाड़ी करे के बात है, अब उनका तैयारी करे के भी बात है, अब किसी भी तरह से जो है से उनका पास बहुत कम समय बच रहा है और किसान भाई बहन जे थीन से
6: यहाँ पर देख लो कि हमेशा जो है अलग अलग जितना भी राज्य है या तो जितना कृषि विज्ञान केंद्र होले या तो कहा कहा कि कृषि विभाग होले, सब जोड़े कहीं कहीं एक अस्थायी रूप से एक अभियान चलावल जा है। और खासकर जे हमें के मौसम आधारित जो खेती हुई नहीं सुंदर भाई, जो कहा कि खरीफ मौसम से पहले, रबी मौसम से पहले, या देखा कि कीट और रोग जो फैलो है ओकर से पहले, या तो जो प्राकृतिक आपदा हो जाए ना ओकर पहले, देखा कि गाहे बेगाहे जब पानी बरस जाए, गाहे बेगाहे देखा कि तापमान कितना बढ़ जाए, उस समय खेती बाड़ी के नुकसान ना होवे ओकर वास्ते देखा कि खेत बचाओ अभियान चलावल जाए है, जो कि मतलब एक राष्ट्रीय अस्थायी मतलब योजना है, जेकर से किसान के जागरूक हुए के कहल जाए कि मुहिम छेड़ल जाए कि जागरूक होती कि हमेशा फसल से पहले अपन योजना बना लेवे के चाहिए।
7: बिल्कुल सही बात बता रहा तू, किसान भाई बहन जी ऐसे अगर योजना बद तरीके से अगर काम करत हैं तो उनका कभी नुकसान ना हो सको एकर में। और रहला बात यहाँ की जैसे खेत और फसल के बचाव खातिर सबसे जरूरी पर जा है एकर में एकीकृत कीट प्रबंधन।
6: हाँ हाँ,
7: ओकर में कहा सही समय पर सिंचाई और मिट्टी के जो गुणवत्ता बनावल रखे चाहिए, एकर में कहा किसान भाई बहन के जो फसल के जो प्राकृतिक आपदा हुआ है जैसे कीट हो गए, जानवर से जो बचावेला और वैज्ञानिक तरीका से अपनावे के किसान भाई बहन के चाहिए। अगर हम पशुपालन कर लिए तो कहीं कहीं हमें पशु चिकित्सा से सलाह मशवरा लेना पड़ता है।
6: हाँ,
7: अगर हम खेती बाड़ी कर लिए तो हम इनके जो है से कृषि वैज्ञानिक जो थी उनका से सलाह मशवरा लेना चाहिए। अब हम जो बात हम करवाए कि मिट्टी और खेत की सुरक्षा कैसे कर जा सकते प्रकाश भाई, तो सबसे कहा है कि फसल चक्र के बारे में बात करवाए कि एक ही तरह के जो फसल बार बार उगावे होते हैं किसान भाई बहन और मिट्टी जो उपजाऊ क्षमता ओकर में घट जाए। जैसे अगर हम आलू उपजा लिए तो एक बार ही ना उपजा सको, सरसों है या कोई भी चीज अगर हम उपजा लिए तो जैसे बारी बारी फसल चक्र हम इनके अपनावे के पड़ता है।
6: मैं
7: तो ओकर में कहा है कि जो खेत के जो क्षमता है, जो ओकर में प्रोटीन है, जो ओकर में पोषक तत्व है, धीरे धीरे घटते चल जाए।
6: हाँ हाँ।
7: और ओकर में कहा है कि मतलब फसल बढ़िया से हम इनके ना उगा पा रही है और हम इनके कहे पड़ जाए कि आखिर जमीन में हम इतना फसल लगाओ या होवे का है।
6: देखा कि अगर कहा जा सको कि मुख्य रूप से हम बात करिए तो खेत बचाओ अभियान के जोड़े किसान के काका फायदा हो सको है, तो जानला कि फसल उत्पादन में वृद्धि हो सको है, बढ़ोतरी हो सको है और देखा कि लागत में भी कमी होता है, माटी हो गए, पर्यावरण के कहल जा सको सुरक्षा भी होता है, फसल नुकसान भी कम होते हैं और किसान के आय में सुधार होते हैं। और कहल जा सको है कि हमेशा जे भी किसान अपन जान बुझ करके अपन समझ बुझ करके जे काम करो थीन खेत बारी में फसल लगाओ थीन और मौसम से पहले मौसम के बाद पूरा ध्यान रखो थीन उनकर आय हमेशा चौगुना बढ़ो है और अपन खेत से बाजार तक के सफर जो है बढ़िया से तय कर पा रहो थीन।
7: प्रकाश भाई, किसान भाई बहन के जरूरी सोचे के चाहिए, सोचे की ना चाहिए, करे की भी चाहिए कि अगर मिट्टी के उपजाऊ अगर क्षमता अगर बना के रखना हो, अगर बढ़ावे के हो, तो तेलहनी और दलहनी हाँ। दोनों उनका करे के पड़ते है। ओकर बात का है कि जैविक खाद जो है किसान भाई बहन खातिर खेत के जो मिट्टी हुआ है सख्त हुआ है हाँ। ओकर में कहा है कि एकर लिए समय समय पर सड़ल गोबर के खाद या तो फिर कह जा सको कि बर्मी कम्पोस्ट केचुआ खाद इस्तेमाल जरूर करे के चाहिए। अगर किसान भाई बहन सड़ल गोबर देथिन, कम्पोस्ट देथिन, केचुआ खाद देथिन, तो जमीन में जो है से नमी भी बनल रहता है, ओकर बाद जो है से ओकर पोषक तत्व वहां से मिलते रहे। ओकर बात का है कि जो है किसान भाई बहन जो नमी बनाए खातिर काम करे के चाहिए उनका, कि पानी के जो बचत जो हुआ है उनकर खेत के लिए ओकर में कहा है कि मल्चिंग जिससे पौधा के जड़ के पास सुखल जो हो जाए ओकर खातिर जो है कि पत्ती डाले के चाहिए और कहा है एकर से कहा है कि नमी बनावल रहो है
6: और बेस कहला। और ऐसे में किसान जो है अपन मौसम आधारित खेती बाड़ी के काम आसानी से कर लो थीन और खेत बचाओ अभियान नाम सुन के ही लगो है कि अपन खेत के उर्वरा क्षमता बनाए वास्ते हाँ। और फसल के उत्पादन बढ़ाए वास्ते, पर्यावरण के भी बचाए वास्ते जे भी हम के काम बेस करे पड़ते से करो पड़ो है। और किसान इस बात के भली भांति समझो थीन है ना, काहे कि जानो थीन कि किसान के माटी के संबंध बहुत ही पुराना है और हमेशा बनल रहते हैं। माटी से ही पूरा बीज के चुनाव करके हमें के अपन आय के दुगना करो थे।
7: बिल्कुल,
6: भाई
7: बिल्कुल।
6: अब धीरे सुनिए एक जरूरी संदेश के बाद हमें सुनबे भाई कि कौन तरीके जो है पशु के देखभाल करे के चाहिए है ना
7: हाँ।
6: और आगे ये भी जानबे कि किसान जो है खेती बाड़ी तो करो थीन लेकिन का आधुनिक तकनीक से पॉली हाउस में कैसे नर्सरी तैयार करल जाए और कैसे
7: फायदा
6: के रोजगार मिलते से भी फायदा हमें सुनबे। लेकिन अब धीरे सुनिए एक जरूरी संदेश।
8: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
9: सलाम बोल रहे
8: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
9: मतलब
8: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
9: परंतु समय डाले
8: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
9: सच है?
8: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
9: ठीक है भाई, मैं भी आते जल्दी खेती शुरू करूँगा।
10: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: तो किसान भाई बहन, ये जरूरी संदेश के बाद हम इन बात करो ही है, कहीं न कहीं खेती बाड़ी और पशुपालन एक सिक्का के दो पहलू हुए है। वैसन में पशु के देखभाल करना बहुत ही जरूरी हो जाए। आज हम बात करबे एक रोग के बारे में जो खुरपका मुंहपका के नाम से जानल जाए है ना। और वो पशु जे हर किसान जे अपन अपन गौशाला में या तो देखा कि अपन घर में जे पालो थीन, जैसे गाय हो गलो, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर है ना, और दुधारू नस्ल के जितना भी गाय हुआ सबके पालो थीन, तो वो जानवर में मुंहपका और खुरपका रोग हो जाए है ना।
7: बिल्कुल,
6: से जाने अनजाने में देखा कि पशु के भी क्षति पहुंच जाए और परेशान रहो थीन हम इनके पशुपालक भाई।
7: सही बात।
6: तो ओकरा दूर करे वास्ते का चाहिए भाई? तो एकरे वास्ते सबसे जरूरी है कि समय समय पर पशु के टीकाकरण करना बहुत ही जरूरी है। और खासकर ई संक्रमक रोग है, संक्रमक रोग हो गलो मतलब कि देखा कि बीमारी जे बीमार पशु है ना ओकर से दूसर पशु में भी वो का हो जाए,
7: छुआछूत
6: हो जाए, तो दूसर के पास वो बीमारी फैल जाए, तो ओकर से वो पशु से कम से कम बीमार पशु से दूर रखे के चाहिए।
7: बिल्कुल सही बात बताया। तो प्रकाश भाई कि किसान भाई बहन जे थीन से जब पशुपालन कर ले थीन और पशु के अगर अगर समय पर अगर टीकाकरण ना कराओ थीन तो कहीं कहीं जे से दूसरे जानवर के भी पकड़ ले है और बाद जैसे जब बीमारी जब पकड़ ले है तो बात इलाज कितना भी करे है लेकिन उस अनुपात से ना ठीक हो पाए जितना जैसे शुरुआत में तो टीकाकरण कर।
6: और देखा कि ऐसे में कोई भी किसान पशुपालक भाई जी हथिन अपन गाय बैल के खासकर जो अपन खुर देखवा तो वहां पर जहां गंदगी रहे गुहाल सब में
7: हाँ हाँ।
6: तो वहाँ गंदगी कहा है कि गैस में पूरा घुस जाए, गंदगी हो जाए, जेकर से वहाँ पर कहा है कि कीड़ा का फंगस लग जाए,
7: फंगस
6: है
7: लग जाए।
6: तो ओकरा भी कम से कम साइंस के बेरा में चाहे बिहन में कम से कम पैर के भी साफ सफाई कर देवे के चाहिए। और जो गोहाल में रख ले हैं या बहुत बड़ा गौशाला हो वहाँ कम से कम नीचे के जो फर्श वगैरह साफ रखे के चाहिए हमेशा फिनाइल से कि हम साफ रखे से का होता कि ओखिन के कम से कम पैर में वो बीमारी ना फैलते।
7: तो देखो अभी कहा है कि अभी गर्मी के समय प्रकाश भाई और जिसमें किसान भाई बहन अगर अपन गोहाल के धो होती या तो फिर अपन पशु के धो होती तो जिस तरह से तुम्हारे पास व्यवस्था हो धोवे के चाहे नल से व्यवस्था हो या पाइप से है तो कम से कम खुर में पानी मार देवे के चाहिए। और जे तरह से अभी तापमान अभी बढ़ल है कम से कम जो है हम इनके क्षेत्र में जो है 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो उस स्थिति में जो है पशुधन जो रख ले थी तो कम से कम रोज या भी के समय में कम से कम ओकरा धुलाई करना बहुत जरूरी है।
6: हाँ हाँ, और खासकर ये भी देखा जाए कि साइंस के बेरा में और बिहने के बेरा में अगर अगर साफ सुथरा कर देते नहला भी देते तो बेस्ट कहते हैं। और अब कम से कम गोहाल जो है साफ सुथरा के साथ साथ हवादार भी होने के चाहिए जेकर से अभी के पशु जो है बेस्ट तरह के रख रखाव हो सको।
7: हाँ,
6: है
7: ना।
6: अब देखा कि चलते चलते अब हम इन बात कर रही है जैसे तकनीक जो है अलग अलग हो है ना, और ओकर में कहा है कि किसान जो है अब जो है मौसम बेमौसम खेती करे चाहो थी तो पशु के एक तरफ देखभाल तो जरूरी हो लेकिन साथे साथे कहो कि खेती बाड़ी भी जरूरी हो।
7: हाँ हा।
6: तो किसान क्या करते भाई कि पशुपालन भी आराम से हो जाए और खेती बाड़ी भी हो जाए। अब तो समय यही आगलो है यशविंद्र भाई कि अब धर जेखा देखा कि गर्मा फसल लगल हो है ना, कहीं ना कहीं आवे वाले समय में बरसाती फसल भी लगते जब बरसात का जब शुरुआत हो तो उस समय तो कैसे ओकर में तालमेल बैठाइए कैसे हम इनके पौधा जो है एक के साथ बड़ा होता है। तो कहवा कि अगर हम अपने खेत पानी में कोई बीज रोपोइए
7: बिल्कुल
6: तो देखवा कि कोई बीज पहले उग जाए कोई बीज बाद में
7: बाद में
6: ओकर से क्या होता है कि भाई कोई फसल पहले फसल दे ले हो कोई बाद में दे ले हो तो बेचो में बहुत दिक्कत हो जाए है ना।
7: इसे
6: तो,
7: सही बात कह रहा कि अगर से हम चार को बीज अगर लगे लिए
6: हाँ,
7: तो चार बीज में दो बीज एक ही कठम है तो कहा कि दो पहले निकल जाए दो है से बहुत एक आध सप्ताह लग जाए निकले में तो कहीं कहीं जैसे अगर हम बीज के उपचार कर करके लगेती तो हमारा नुकसान कभी ना हो सको प्रकार।
6: हाँ, ओकर में कहा है कि आज हम बात कर रहे पॉली हाउस जो कि एक आधुनिक खेती के नया तकनीक है। ओकर में पॉली हाउस में कहा है कि कोकोपीट यानी कि जे काला काला जे रोह है पत्ती है रोह है ना हाँ। प्लास्टिक ट्रेड रोह है वही ट्रे में कहा है कि बीजा लगावल जाए और बीजा से नया पौधा बनो है और ये भी देखवा कि सब पौधा एक साइज के बनो है। जो किसान एकड़ो एकड़ खेती करो थी है ना ओकर में कहा है कि जब फसल एक बार उगो है तो तोड़ाई भी एक साथ हो जाए जेकर से कहा है कि हम इनके खेती बाड़ी में लागत भी कम हो है बेचे में भी सुविधा हो जाए। तो का अनुभव रहता है और कैसे हम इन पॉली हाउस में खेती कर सको ये और बीजा नर्सरी तैयार कर सको ये वो जानकारी देते थे दीन बंधु महतो जो कि कंचनपुर हजारीबाग के रहे वाला थी है ना।
7: ये बातचीत कर रहे थे हम इन्होंने से प्रकाश कुमार राणा
6: तो पहले इनखर के बातचीत के सुनो ये तब इन बातचीत आगे भी रखबे।
11: किसान भाइयों एवं बहनों आज हम बात करेंगे आधुनिक खेती की ऐसे तकनीक की जो कम जमीन में ज्यादा उत्पादन और अधिक मुनाफा देने में मदद करती है। बात करेंगे पॉली हाउस की खेती के बारे में। तो पॉली हाउस खेती क्या है और पॉली हाउस खेती से क्या फायदे होते हैं किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं पूरी जानकारी जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं कंचनपुर गांव जो कि कटकम सांडी ब्लॉक हजारीबाग के रहने वाले एक दीन बंधु प्रसाद जी हैं। तो इन्हीं से जानते हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार।
12: धन्यवाद। नमस्कार।
11: पॉली हाउस लगाना है किसानों को मदद करना है या बीज से किसानों से जुड़ना है तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया?
12: देखिए क्या है कि हमारा व्यवसाय भी एग्रीकल्चर का ही है। एग्रीकल्चर इनपुट से रिलेटेड सारा प्रोडक्ट हमारे यहाँ प्राप्त होता है। पॉली हाउस लगाने का उद्देश्य मेरा ये था कि किसानों का उत्थान हो। किस तरह से उत्थान होता है वो कुछ हम बताते हैं। जैसे सीड रेट इसमें घट जाता है। सीड रेट कहने का मतलब है कि कोई भी चीज का सीड यदि 100 ग्राम में जितना होता था पॉली हाउस में नर्सरी होने से वो 20 से 30 ग्राम में हो जाता है। रीजन उसका ये है कि इसमें डैमेज नहीं होता है प्लांट। और दूसरा रीजन ये है कि जर्मिनेशन परसेंटेज चूंकि ये मिट्टी इसमें नहीं यूज होता है तो जर्मिनेशन परसेंटेज लगभग 90-95% हो जाता है।
11: पॉली हाउस से क्या क्या फायदे होते हैं जैसे कि मौसम से सुरक्षा है या अधिक उत्पादन है साल भर खेती होती है तो ये पॉली हाउस लगाने का तकनीक क्या है पॉली हाउस में किस तरह का संरचना होती है सो बता दें।
12: देखिए पॉली हाउस क्या है कि एक स्ट्रक्चर तैयार होता है पाइप से लेकर के प्लास्टिक रहता है फाइन पाइड रहता है ताकि पौधे को जो आवश्यक तापमान चाहिए मौसम में उसके हिसाब से इसमें दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि चूंकि ये को पहले ही बताएं कि मिट्टी इसमें नहीं रहता है, तो जो 35 दिन 30 दिन 25 दिन या 40 दिन हर एक पौधे के लिए अलग अलग नर्सरी का समय होता है, उसमें क्या होता है कि मिट्टी से रिलेटेड जो रोग लगते थे वो रोग भी नहीं लगता है, चूंकि इसमें मिट्टी रहता नहीं है। दूसरा, जड़ों का विकास काफी अच्छा होता है। और तीसरा, सबसे बड़ा फायदा, ट्रांसप्लांटिंग शॉक नहीं लगता है। कहने का मतलब है कि जो रोपाई करने के बाद मिट्टी में जो नर्सरी तैयार करते हैं वो जब उखाड़ते हैं तो उनका जड़ टूट जाता है।
13: अच्छा।
12: और इसमें जड़ टूटता नहीं है, तो ट्रांसप्लांटिंग शॉक नहीं लगने की वजह से पौधा लगाते ही शुरू से ही स्वस्थ रहता है, जिसकी वजह से उत्पादन ज्यादा आता है।
13: चलिए, आपके पॉली हाउस में है, सबसे पहले बात करते हैं कि कई तरह की फसलें यहाँ लगी हुई हैं, तो क्या मौसम आधारित होता है या बिना मौसम भी किसान खेती अब कर सकते हैं?
12: नहीं, देखिए पॉली हाउस में मौसम का कुछ, एक तो मौसम आधारित ही होता है और दूसरा थोड़ा बहुत ऐसा है कि पॉली हाउस में आप कुछ अलग मौसम में भी कर सकते हैं।
13: तो यदि किसान बीज ला कर आपको देते हैं या तो खुद का आपका बीज होता है, प्रमाणित बीज होता है, तो इसका क्या प्रक्रिया है, बीज लगाने का पूरी प्रक्रिया बताइए।
12: देखिए, दो तरीके का प्रक्रिया है। एक तो किसान अपने से बीज खरीद के लाए और हमको दे दिए तो हम उसका मेकिंग चार्ज लेते हैं।
13: अच्छा।
12: पौधे तैयार करने का जो चार्ज होता है वो लेते हैं। और दूसरा होता है कि कुछ हम लोगों को लगता है कि नहीं, इस सीजन में इतना पौधा का डिमांड हमारा रहेगा, तो उसके हिसाब से हम खुद से बीज डालते हैं और फिर पौधे का डिमांड आता है फार्मर का, उसको देते हैं।
13: काला रंग का जो है पीट बना हुआ है, ये प्लास्टिक का, इसके बारे में पूरी जानकारी दी, जो बीज लगाते हैं इसमें क्या क्या डाला हुआ है और कितने दिनों में वो बीज जो है पौधा बन जाता है?
12: जैसे देखिए, ट्रे आता है, ट्रे दो तरह का यूज करते हैं हम लोग, 104 के वी टी का और 126 के वी टी का। कहने का मतलब है कि 104 के वी टी में स्पेस कम रहता है तो जड़ का विकास कम होता है, और 126 के वी टी में जड़ का विकास ज्यादा होता है चूंकि स्पेस ज्यादा रहता है।
13: अच्छा, इसमें क्या क्या मिलाते हैं?
12: इसमें कोकोपीट मिलाते हैं, मल्टीप्लेक्स का अन्नपूर्णा आता है वो मिलाते हैं।
13: अच्छा।
12: और उसके बाद अंकुरण के बाद वाटर सोल्युबल खाद का इस्तेमाल करते हैं, मतलब घुलनशील खाद होता है ये।
13: तो इससे क्या क्या फायदे हो पाते हैं, जैसे पौधे में किस तरह से विकास हो पाता है?
12: पौधे को वाटर सोल्युबल कहने का मतलब ही है कि जो चाहिए पौधे को जड़ के पास ही मिलता है।
13: अच्छा।
12: और उसको जितना चाहिए, ना अधिक ना कम, तो उसके वजह से उसको संतुलित विकास करने में सहायता मिलता है।
13: पॉली हाउस है, किस तरह से रोजगार दे सकता है, किसानों को किस तरह से आकर्षित करता है वो बता दे, क्योंकि बड़े किसान जो है एकड़ में खेती करते हैं, यदि बीज लगाते हैं उनका इंतजार करते हैं तो समझ जाता है यदि वो पौधा नहीं निकल पाया तो उनका मेहनत बीज सब चला जाता है।
12: हाँ, बहुत।
13: तो किस तरह से उन्हें फायदा हो पाएगा यदि आपसे संपर्क करते हैं या कोई भी पॉली हाउस का जो कोकोपीट से बना हुआ जो बीज है पौधा है, ये ले जाते हैं, नर्सरी ले जाते हैं, तो क्या फायदा हो पाता है?
12: देखिए, इसका दो तीन मोटा मोटा फायदा है। पहला तो कि यदि किसान को एक महीना बाद पौधा रोपना है, उसके जमीन में फसल लगा हुआ है, वो एक महीना पहले प्लान कर लेगा, पॉली हाउस में पौधा बीज दे देगा।
13: अच्छा।
12: तो इसका इधर पौधा तैयार होते रहेगा, उसका फसल जब तक निकलेगा फिर वो रोपाई के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। दूसरा फायदा ये है, मान लीजिए कि मौसम का मार पड़ जाता है, कभी ज्यादा ठंडा होने की वजह से बाहर पौधा खराब हो जाता है, ज्यादा गर्मी होने से भी पौधा खराब होता है, और सबसे ज्यादा बारिश में पौधा खराब हो जाता है, अधिक बारिश हुआ तो पौधा खराब हो गया, इस सब नुकसान से सुरक्षित हो जाता है। उसको नुकसान कुछ नहीं लगना है, उसका जो प्लानिंग है उसको परफेक्ट टाइम पे पौधा मिल जाएगा, वो अपना ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, अपना खेती अच्छा से समय से हो जाएगा उनका।
13: यदि किसान जो है सीधे आपके पास पोर्ट्रे लेने के लिए आ जाए, कैसे किस तरह से उन्हें दे पाते हैं, क्या इसका कीमत रहती है?
12: पोर्ट्रे का क्या है ना, देखिए ये सब मार्केट पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हम लोग 8 रुपया में पोर्ट्रे फार्मर को देते हैं, 1 रुपया कम भी हो जाता है कभी, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। पोर्ट्रे ही नहीं, इससे रिलेटेड जो भी चीज है, कोकोपीट है, अन्नपूर्णा है या और भी चीज है, वाटर सोल्युबल है, ये सारे चीज हमारे यहाँ इनको आसानी से मिल जाता है। और यहाँ करीब करीब चूंकि हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, लगभग 10 सालों से हमारा पॉली हाउस है।
13: अच्छा।
12: तो काफी फार्मर जानते भी हैं।
13: ये पॉली हाउस क्या आपका अपना स्वयं का है या हाँ, तो कि अनुदानित है?
12: नहीं, अनुदानित नहीं है, ये कॉमर्शियल है।
13: पॉली हाउस में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें होती हैं?
12: देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बीज, एक तो अब हाइब्रिड बीज आता है तो लगभग सब अनुसंधानित रहता है। यदि कुछ ओपी बीज किसी का ऑर्डर है या कोई आइटम ओपी ही चलता है तो उसको हम लोग सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट करके ही डालते हैं।
13: अच्छा।
12: और समय समय पे दवा का छिड़काव जो हम लोगों को जरूरत समझ में आता है वो करते हैं। दूसरा चीज है, पौधे का विकास यहाँ एक साइज का रहता है।
13: ये भी बात होती है कि जहाँ कोई किसान लगाते हैं बीज में तो कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, तो जिसमें फल देने लायक होता है
12: हाँ, तो आगे पीछे
13: फलता है, जिससे भी समय की बर्बादी होती है।
12: ये फॉर्मल साइज रहेगा, उसका फायदा ये होता है, मान लीजिए कि अभी गोभी का सीजन है तो गोभी एक साथ कटेगा तो उसका खेत भी एक साथ खाली हो जाएगा ना।
13: और क्या इसके उत्पादन में क्या अंतर नजर आता है आपको?
12: उत्पादन में 10-15% का वृद्धि हो जाता है। ऐसा है कि हम लोग, हमारा ये एग्रीकल्चर बिजनेस 26 साल पुराना और इस एरिया में लगभग दीन बंधु प्रसाद को सब जानते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और उसमें जिनको भी जो समस्या आता है हमारे तरफ से कोशिश रहता है कि उसका समाधान किया जाए। पहला तो कि हमारा बिजनेस को ग्रोथ करने में ये सपोर्टिंग रोल है अदा करता है। दूसरा 15 इम्प्लॉई का रोजगार हमारे थ्रू इस पॉली हाउस से मिल रहा है। और तीसरा क्या है कि किसानों का उत्थान होने से ही हमारा बिजनेस आगे जा सकता है। बारीकी में ध्यान यही रखना है कि पॉली हाउस का कभी भी हम लोग तो अपना चूंकि एक रेपुटेशन बना हुआ तो एकदम जो परफेक्ट चीज है वो देते हैं, बाकी भी बहुत सारे पॉली हाउस है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीज का चुनाव और पॉली हाउस का चुनाव ऐसा करें नर्सरी देने में कि वो आपको आप जिस उद्देश्य से उसको दे रहे हैं वो उद्देश्य आपका पूरा हो।
13: दीनबंधु जी आप अच्छी जानकारी दिए कि पॉली हाउस में जो बीज का जो नर्सरी तैयार किया जाता है नर्सरी से किसानों को किस तरह से फायदा हो सकता है, और यहाँ पर पौधा लेने से एक साइज का पौधा होता है तो कई तरह के किसानों को फायदे हैं, कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा पॉली हाउस बना हुआ आपका, तो हमें उम्मीद है कि किसानों को ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो अपने नजदीकी जो पॉली हाउस है या तो फिर यहाँ आपका कम सांडी ब्लॉक में कंचनपुर गांव में हमारे दीनबंधु जी हैं, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं और यहां से भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
12: धन्यवाद।
6: तो ई हल्थिन दीनबंधु महतो जी जे बतेलथिन भाई कि पॉली हाउस में काका खूबी हो है और पॉली हाउस से किसान जो है कैसे फायदा ले सको थीन, और किसान जो है पॉली हाउस बना करके भी एक आमदनी के जरिया भी बना सको थीन, कहे कि अब समय है नया नया तकनीक के। वैसे भी देखा कि हर गांव मोहल्ला में आजकल जानो थीन कि बीज लगाना और नर्सरी तैयार करना और तैयार के बाद पौधा लगाना एक लंबा कहल जा सको समय लगा है, लेकिन अब तो तरीका सीख गलथिन है भाई कि जैसे ही तौर पर नर्सरी आ गलो है बस अपन माटी के जुताई करथिन ओकर बाद गंडारी काटथिन और सीधे अपन खेत बाड़ी में वह नर्सरी के लगा देथिन, जेकर से कहा है कि पौधा मारे के गलन के शिकायत भी कम होते और हाँ। पौधा बढ़वार भी अच्छा होते और कहल जा सको कि समय से तोहर पौधा फसल देवे लायक भी हो जितो है ना। और भाई और देखा कि ये जानकारी सुनकर के किसान भाई बहन के बहुत ही फायदा होले होते।
7: तो अब देखो हमें अब जानकारी की तरफ बढ़ो है प्रकाश भाई कि
6: और देखा कि जानकारी के बाद कहला यशविंदर भाई, तो जानकारी से पहले हम जानो ही आज के बाजार भाव के बारे में मौसम के जानकारी के बारे में, कहे कि किसान देखा उनखर जो फसल है खेत बाड़ी में लगल रहो है, वैसा में देखा कि आज के दिन में जी गर्मी जो हो बहुत चरम सीमा पर हो है ना, चारों दिन से देखा कि जैसे ही दोपहर हो है गर्मी के तापमान बढ़ जाए, वैसे में किसान भाई बहन के खेत बाड़ी के देखभाल करना और मौसम के जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो जानो ये आज के पहले बाजार भाव कि का रहले आज के बाजार भाव।
7: आज के जो बाजार भाव है प्रकाश भाई कि लाल आलू जो है 20 रुपए से लेके 25 रुपए प्रति किलो है, सफेद आलू 15 रुपए से लेके 20 रुपए प्रति किलो है, और प्याज जो है 10 रुपए से 15 रुपए प्रति किलो है, फूलगोभी जो है 50 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो है, और पत्ता गोभी 30 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति किलो है।
6: तो पटल की बात करिए तो पटल के दाम रहले 30 से 40 रुपए प्रति किलो, भिंडी 25 से 30 रुपए प्रति किलो, नेनुआ 25 से 30 रुपए प्रति किलो, कद्दू 15 से 20 रुपए प्रति किलो,
7: और हरा मिर्च 100 रुपए से लेकर 110 रुपए प्रति किलो है, शिमला मिर्च 50 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो, गाजर जो है 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो है, और बीट 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो है।
6: सीम की बात कहला तो सीम जो है 30 से 40 रुपए प्रति किलो, और बीन जो रहे 30 से 40 रुपए प्रति किलो, धनिया पत्ता जो रहे 100 से 110 रुपए प्रति किलो, खीरा देखा कि 25 से 30 रुपए प्रति किलो, और बिलौती देखा कि 30 से 40 रुपए प्रति किलो,
7: और मूली के जो आज के बाजार भाव है 30 रुपए 40 रुपए प्रति किलो है, और लाल साग जो है 20 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो है, और पालक साग जो है 20 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो
6: तो
7: है।
6: तो ये तो रहे आज के बाजार भाव जो अपन बाजार में अपन फसल के दाम दुकान जो है सही से कर लेवे के चाहे जेकर में फसल के बेचे में सुविधा हुआ है, लेकिन साथे साथे मौसम के जानकारी भी होना बहुत ही जरूरी है, क्या कि उतार चढ़ाव हुआ है और फसल में माटी में नमी रहना बहुत ही जरूरी है।
7: जरूरी
6: तो बता दिए आज के ज्यादा से ज्यादा तापमान हले 39 डिग्री सेल्सियस और कम से कम आज के तापमान हले 27 डिग्री सेल्सियस।
7: और प्रकाश भाई कल के जो तापमान के जो अनुमान कर जा रहा है कि कल के तापमान के अनुमान है 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 27 डिग्री सेल्सियस,
6: और आज के आर्द्रता के बात करिए तो आज के आर्द्रता रह 32%। और देखा कि कल के मौसम का अनुमान है भाई कि कल भी तापमान जो है हमेशा ऐसे ही बनल रहते हैं, तो भाई बच बचाव करथिन, खेत बाड़ी जरूर जेथिन लेकिन कम से कम सांझ और बिहने के बेरा में ही निकलथिन और अपन कम से कम अपन स्वास्थ्य के ख्याल जरूर रखथिन। चलते चलते यशविंदर भाई आज बात करबे अपन किसान भाई बहन से, क्या की योजना जो आऊ है ना वो किसान सबके भलाई के वास्ते आऊ है। हाँ। योजना के बारे में जानकारी भी रहना बहुत ही जरूरी है, क्या की योजना जो है केंद्र सरकार देने से भी चलो है, राज्य सरकार देने से भी चलो है, अब प्रखंड में भी बहुत सारे योजना ऐसा चलो है जेकर से किसान के हमेशा फायदा हुए।
7: तो आज हम बात करबे हमें प्रकाश भाई कि भारत सरकार द्वारा जो शुरू करल गला है डिजिटल कृषि मिशन।

0: तो सबसे पहले मैं बात कर लेबे कि ये डिजिटल कृषि मिशन के जे मुख्य उद्देश्य हुआ है उन्नत तकनीक हुआ है जरा जे कहा जा सको कि AI रिमोट सेंसिंग के उपयोग से किसान के जे सशक्त बनावे खातिर कृषि उत्पादकता बढ़ावे और सरकारी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लावे खातिर योजना के समय समय पर सटीक जानकारी के लाभ किसान भाई बहन के मिल सको है।
1: बेस कहला और देखा कि डिजिटल कृषि मिशन जो भारत सरकार के जो पहल बतेला ओकर कहल जा सको कि उद्देश्य यह हो कि अब आधुनिक तकनीक और डिजिटल सेवा से जोड़े के डिजिटल सेवा के मतलब ये हो गलो है कि अब पहले जैसा ना रहलो कि भाई अब आदमी खोजल जब है ना तो तुम्हारा पास आदमी ना मिलता है ना, मजदूरा खोजे में भी तुम्हारा एक जोर लग जाए। से वास्ते का है भाई कि अब डिजिटल डिजिटल का मतलब हो लो कि जैसे ई नाम पोर्टल देख ला कि एक राज्य से दूसरा राज्य में भी तुम अपना फसल बेच सको है ना, वैसे ही में अब कोई भी जानकारी अपन हाथ में रहते है ना, कोई भी पहचान अपन हाथ में रहते, अब कोई भी माटी में तू कोई फसल ना लगा सको है, माटी के जानकारी भी रखे के चाहिए तो कम से कम नजदीकी जो हो तो हर कृषि विभाग वहाँ माटी की जांच भी हुआ है।
0: हाँ।
1: तो तरह तरह के योजना है जेकर से तोहरा खेती बाड़ी से जुड़ा सारा जानकारी तोहरा मिल सको हो।
0: तो फिर हम अब एक फिर बता रहे कि ये मिशन के जो प्रमुख उद्देश्य वो है एक बता दिए कि किसान जो है से केंद्रित डिजिटल संरचना जो है किसान भाई बहन खातिर है कि किसान की एक विशिष्ट डिजिटल एक में पहचान जा सको है और पहचान बनाने के बाद जो है से उनकर भूमि के रिकॉर्ड के जैसे बाय कर जाए और फसल के स्टिक जैसे डेटाबेस तैयार करो थी में।
1: अगर कहल जा सको कि अगर किसान सबके फायदा के बात कहला यशविंदर भाई तो सही समय पर कृषि सलाह जो है मोबाइल से मिल जाए। डिजिटल के मतलब यही ना हो गलो है कि देखा कि फट से मोबाइल से अपन फसल के फोटो खींचला कि कौन से बीमारी लगल हो।
0: हाँ।
1: अपन कृषि विशेषज्ञ जो रे भेज देला वहां पर नंबर लेकर के थोड़ा बैठले बैठले जानकारी मिल जितो। आजकल देखा कि टोल फ्री भी नंबर है गले है किसान भाई बहन के जे अपन अपन भाषा में बात कर सको थी कृषि विशेषज्ञ जो रे, तो यही कहल जाए डिजिटल। और भी ये भी कहा जा सको है कि मौसम के जानकारी भी तुरंत मोबाइल के जोरे तुरते मिल जितो कि हाँ भाई आज के मौसम का रहले कल का रहते ओकर जानकारी मिल जाए। फसल बीमा योजना के बात कहला तो एकरो भी जानकारी डिजिटल मतलब कि तोहरा ऐसे ही पता चल जितो कि इस बार के है कि कितना हमें का अनुदान दे पड़ते हैं, कितना सरकार भी मदद करते हैं, इस तरीके से तोहरा जानकारी मिलतो।
0: हाँ।
1: साथ ही साथ उर्वरक के बात कहला, बीज के बात कहला या तो अपन जमीन के ऑनलाइन भुगतान के बात कहला, तो सब जोरे कहबा कि डिजिटल चारों दने हो गलो है, तोहरा जागरूक होना बहुत ही जरूरी हो।
0: एक में कहा है कि जो मुख्य उद्देश्य ये है, एक बात कहा है कि जो पारदर्शिता और दक्षता एक करो है जैसे कृषि ऋण बीमा और सरकारी सब्सिडी जो सीधा किसान तक पहुंचो है, एक में कहा है कि जगह से बिचौलिया के जो भूमिका हो है वो खत्म हो जाए है और भ्रष्टाचार पर ही रोक बिल्कुल रूप से लग जाए है। ओकर बाद कहा है कि आधुनिक तकनीक के जो उपयोग किसान भाई बहन करो थी जैसे आर्टिफिशियल जैसे इंटेलिजेंस हो है, ओकर में कहा है कि इंटरनेट द्वारा जो है जैसे तू बतेला अभी कि तुरंत किसान भाई बहन गूगल खोल देते या इंटरनेट के माध्यम से देख लेते कि कौन सा बीमारी या कौन सा फंगस लग रहा है, उस हिसाब से दवा का ही प्रयोग कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से कहा है कि ऋण और बीमा तक जो है से किसान भाई बहन आसानी से पहुंच जाते हैं। एक में कहा है कि डिजिटल पहचान करे खातिर जो है से मदद करो है और किसान के जो फसल बीमा जैसे कहा जा सको कि कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त होने में बहुत आसानी से मिल जाए।
1: कहल जा सको है कि किसान के अब जो है स्मार्ट किसान बनो पड़ते है ना, स्मार्ट किसान के मतलब हो कि तोहर हाथ में भी स्मार्ट मोबाइल रहे के चाहिए और खेती किसानी से सारा जानकारी तोहरा मोबाइल से मिल सको है। और भाई हमिन के भी रेडियो चैनल जो है FM जो है हजारीबाग के FM 102.1 MHz पर भी तोहन सुन सको है अपन ऐप के जोरे और हेडफोन लगा के भी हमिन के बातचीत के सुन सको है। तो पूरे जानकारी देखा कि मोबाइल जोरे अपन अपन कार्यक्रम के जोरे सारा जानकारी ले सको हैं और जागरूक बन करके आगे बढ़ सको हैं और विकास कर सको हैं ना। हमारा उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम किसान वाणी सब जन कर बहुत पसंद आये होते हैं, ऐसे ही नावा नावा जानकारी के साथ आगे भी बनल रहे, लेकिन वक्त है अब कार्यक्रम से विदा लेवे के। एक साथ हमारा प्रकाश के
0: और हमारा यशमेंद्र के
1: अनुमति दथिन जोहार।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान उड़ाने, प्रायोजित थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए अगला कार्यक्रम खेती बारी।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत है अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं यशविंद्र जी, तो आपका भी स्वागत है, साथ ही साथ मेरा नमस्कार।
4: खेतीबाड़ी कार्यक्रम में सुन रहे सभी ग्राम श्रोता बंधु को भी मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ प्रकाश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल, आपको भी मेरा नमस्कार।
3: और देखिए यशविंद्र जी, आज हम बात करेंगे अपने किसानों के हित के बारे में, और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारियों को एक दूसरे से साझा भी करेंगे, है ना। और हम कई तरह के किसान जो हैं अपनी बातों को बताते हैं अपने कार्यक्रम में कि किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं। वैसे तो अनुभव को सुन करके हम उसके अपने जीवन में उतार सकते हैं और लाभ भी ले सकते हैं। कई विशेषज्ञ भी हैं जो अपनी राय बताते हैं कि किसानों को क्या बदलना चाहिए तरकीब में और क्या सोचना चाहिए। कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जो किसानों को और पशुपालक भाइयों को, बहनों को भी हमेशा सोचना चाहिए, और विचार ये भी मन में रहता है कि किस तरह से, किस तरकीब से खेती करें जो समय के साथ हमारे जो फसलें हैं खेत से बाजार तक पहुंच सके, है ना। तो आज हम बात करेंगे,
4: तो प्रकाश जी हम लोग जानकारी की तरफ चलेंगे और बात करेंगे कि जैव उर्वरक का जो उपयोग है कितना महत्वपूर्ण है और इससे किसान बंधुओं को क्या लाभ मिलता है।
3: बिल्कुल, तो वैसे भी देखिए जैव उर्वरकों की बात करते हैं तो हम लोग पहले से पता है कि प्रकृति के लिए सबसे जरूरी चीज होता है गोबर। गोबर जो एक अमूल्य तत्व है ना, उससे हमेशा क्या होता है कि प्रकृति से, मिट्टी से जुड़ा होता है। कई तरह के सूक्ष्म ऐसे भी तत्व हैं, सूक्ष्म जीव भी ऐसे हैं जो हमारे खेती बाड़ी के लिए बहुत ही लाभान्वित है और उन्हें लाभ पहुंचाती है। तो कई तरह के हमारे इस तरह से कार्य होता है कि वे भी तत्व, वे भी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और हमारा सही से फसलों का विकास भी नहीं हो पाता है।
4: तो हम लोग बातें करेंगे कि जैव उर्वरक जो है जो प्रकृति प्रदत्त जो है लाभदायक सूक्ष्म जीव का एक मिश्रण है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाते हैं, और इनके उपयोग में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कहा जाए कि यह है कि ये जीवित बैक्टीरिया कवक होते हैं जो, इसलिए इनकी जो है सो कार्य प्रणाली और भंडारण लेकर कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी इसमें अति आवश्यक है प्रकाश जी। इसे कहा जा सकता है कि जैव उर्वरक के सही और प्रभावी उपयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हम लोग बात करेंगे अभी कि फसल की जो विशिष्टता होती है, राइजोबियम जैसे कुछ जैव उर्वरक जो फसल विशिष्ट होते हैं, यानी पैकेट पर जिस फसल का नाम लिखा होता है उसी में इसका इस्तेमाल करते हैं।
3: बिल्कुल, और वैसे भी बीजों का जो है अच्छे तरीके से चुनाव करना और खासकर उन्हें कीड़ों से बचाना और इसका एक तरीका से बदलाव करना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि बीजों का जब हमारे मिट्टी में इसका मिश्रण होता है तो नए नए पौधे का जो जन्म होता है, तो बीज उपचार भी हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है।
4: देखिए किसान बंधु को अगर सही फसल लेना है प्रकाश जी, अगर किसान बंधु को पौष्टिक पौधा रखना है या जो भी है, तो रासायनिक खाद से दूरी बनाना पड़ेगा। अगर किसान बंधु अगर दूरी बनाते हैं तो जैव उर्वरक या उनका उपचारित बीज को जो सो कभी भी सीधे रासायनिक खाद जैसे यूरिया DAP के साथ नहीं मिलाना चाहिए। कोई भी बीज हो अगर किसान बंधु अगर लगा रहे हैं तो सीधा सीधा जो संपर्क होता है यूरिया DAP से बचा रखना है उनको।
3: बिल्कुल, बचाव तो हर जगह जरूरी है, वैसे में किसान समझते हैं और बूझते भी हैं ना। यदि हम बात करते हैं यशविंद्र जी कि गांव का विकास किस तरह से हो सकता है, कुछ देर इस पे भी बात करते हैं हमारे, जैसे खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे जो चारों तरफ जो है विकास की धारा बहती रहती है। हम बात करते हैं योजनाओं की, बात करते हैं कि कई तरह की योजना जो है किसानों के लिए, हित के लिए बनी रहती है, जिसको समझना जानना जरूरी होता है। जैसे मान लेते हैं कि खेती बाड़ी में अभी कुसुम

0: पहले जो है फफूंद नाशक लगाएं उसमें, क्या कि इसके बाद सूखने पर जैव उर्वरक की दुगुनी मात्रा से बीज को जो उपचारित करना बहुत अति आवश्यक होता है।
1: चलिए, ये तो जानकारी रही कि जैव उर्वरक का जो है कैसे हम लोग प्रयोग करना चाहिए, कैसे इसे लाभ हो पाता है ना। अब अपने श्रोताओं का क्यों ना जरूरी संदेश के साथ एक गीत सुना देते हैं।
0: हाँ,
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अब इस गीत के बाद चलते हैं जानकारी तरफ और जानकारी सुनते हैं आज का कि मुर्गी पालन आय का एक अच्छा स्रोत है। बता रहे हैं मुर्गी पालक हैं संजय कुमार यादव जो कि ग्राम कर्मा प्रखंड मयूरहंट और जिला चतरा के रहने वाले हैं। इनसे हमारी ओर से बातचीत कर रहे हैं यशविंद्र कुमार यादव।
1: तो जानकारी सुन लीजिए।
0: हाँ
2: श्रोताओं,

0: में चल रहा है और गर्मी के समय में मुर्गी पालक जो है सो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्या क्या सावधानी बरतेंगे जो उनके चूजे सही सलामत रहे, चूजे के बाद जो है सो शुरुआत में कौन सा दाना देंगे, इसका आवास प्रबंधन कैसा होना चाहिए। तो शुरुआत में आप बताइए कि इसका आवास प्रबंधन के बारे में बताएंगे आप।
1: आवास प्रबंधन में देखिए सर, सबसे पहले एक फार्म के ऊपर जो है

0: भूसी पर डालते हैं, गर्मी के दिन में बालू पर।
1: जैसे आप जो बेड इसका बिछाते हैं, जो बरसात और ठंडा के समय में जो धान का जो भूसा होता है वो देते हैं, पर क्या है कि उसके जगह में आप अभी बालू का

0: और उसका जो आप घेरा बनाएंगे, प्रत्येक के घेरा बनाते हैं, कितना चूजा लाते हैं आप?
1: चूजा 4000 मेरा रहता है।
0: 4000, तो 4000 को आप किस कितने गोल में आप बांटेंगे चूजा को, ताकि जो चूजा
1: 6 ब्रूडिंग बनाते हैं। अच्छा, 4000 बच्चा के लिए 6 को ब्रूडिंग बनाते हैं, जिसमें वही लमसम 900 बच्चा के हिसाब से डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, 6 या 7 ब्रूडिंग बनाते हैं आप, उसके बाद धीरे धीरे आप उसे कैसे फैलाते हैं, कितना बड़ा चूजा होता है जो फैलाएंगे आप?
1: प्रत्येक मतलब कि 3 दिन में हम लोग उसको
0: धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। और उसका दाना किस प्रकार देते हैं आप? सब भोजन का क्या प्रबंध है?
1: दाना वो हमेशा

0: प्रोडक्शन है।
1: हाँ हाँ
0: ऐसे बरसात के दिन में प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, तो गर्मी के दिन में क्या है कि 3 दिन का समय एक्स्ट्रा हम लोग को।
1: तो आप जो छोटा दाना खिलाते हैं तो वो लगभग कितने दिन तक तो चलाते हैं वो छोटा दाना?
0: 15 दिन, छोटा वाला जो देते हैं वो 15 दिन तक चलाते हैं।
1: कौन सा दाना रहता है वो?
0: प्री स्टार्टर रहता है।
1: प्री स्टार्टर, उसके बाद जब 15 दिन के बाद आप धीरे धीरे उसे आप उस
0: क्रम स्टार्ट करते हैं,
1: हाँ बढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो दाना का जो क्रम होता है वो दूसरा क्रम हो जाता है
0: जी। क्रम
1: और पानी का क्या व्यवस्था करते हैं? पानी आप किस तरह से पिलाते हैं, या इसमें वायरिंग है पानी का, या तो फिर डब्बा डब्बा देते हैं?
0: नहीं तो पाइपलाइन सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें पानी टंकी से आता है।
1: हाँ हाँ।
0: और टंकी में क्या है कि चारों तरफ से बिचाली देकर उसको बांध दिए हैं, और उसमें भी पानी बिचाली में भी डाल देते हैं ताकि ठंडा रहे।
1: अच्छा अच्छा, जो अंदर का जो पानी है वो उसमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो,
0: मेंटेन करके रखता है। और जब बच्चा मेरा 20 से 22 दिन का होता है तो उसको इलेक्ट्रोल पाउडर भी देते हैं।
1: टंकी में ही देते हैं या फिर डब्बा में देते हैं?
0: टंकी में ही देते हैं।
1: अच्छा।
0: और दिन में 2 बार पानी चेंज करते हैं
1: दोनों। और लगभग आप दिन भर में जो है सो सुबह से लेकर रात तक आप कितने बार पानी पिलाते हैं इसे?
0: दिन में 2 बार पानी चेंज करते हैं, फिर शाम में 1 बार डालते हैं, वो सुबह फिर चेंज होता है।
1: अच्छा, ये देखने की वजह से आप टंकी में जो नल लगा दिए हैं उसके बाद नल के माध्यम से पानी आया डब्बा में
0: जी,
1: तो इस डब्बा में पानी रहता है या फिर डब्बा का पानी
0: आप इसे हटा? पानी ऑटोमेटिक आते रहता है, सिर्फ सुबह सुबह गंदा हो जाता है, तो गंदा होता है बालू लू पड़ जाता है, उसको सुबह कपड़ा से साफ करते हैं, उसके बाद फिर शाम को साफ करते हैं।
1: अच्छा।
0: दोपहर में भी अगर गंदा होता है तो हटा देते हैं फिर पानी।
1: अच्छा अच्छा।
0: गंदा पानी पिलाने से भी बीमारी हो जाता है, इकोलाई आता है लोग।
1: तो आप ग्लूकोज इसमें कितना घोल बनाते हैं ताकि जो है सभी मुर्गियां?
0: 1000 बच्चा पर 100 ग्राम डालते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर।
1: अच्छा अच्छा।
0: गर्मी के दिन में 1000 बच्चा पर 100 ग्राम।
1: हाँ
0: हाँ। फिर 30 दिन का जब बाद बच्चा क्रॉस करता है, तीसरा 30 दिन होता है।
1: हाँ हाँ।
0: उसके बाद ब्रोटोन चलाते हैं ताकि उसको राहत मिले गर्मी से।
1: अच्छा अच्छा।
0: बॉडी वेट बढ़ता है।
1: ये भी देखा जाता है कि जब चूजा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो किसी न किसी प्रकार का कुछ बीमारी जो है तो मुर्गी में प्रवेश कर जाती है, तो उस समय आप इसे इसके लक्षण को कैसे पहचानेंगे और कौन सा दवा चलाएंगे आप?
0: इकोलाई आता है तो उसका लक्षण ये है कि पैर सूखने लगता है।
1: हाँ हाँ।
0: मुर्गी कमजोर, बच्चा कमजोर हो जाता है, तो उसमें हम लोग टूतिया और विनेगर को बनाते हैं अपने से।

0: आयुर्वेद के हिसाब से वो बनता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और उसको चलाते हैं, 3 दिन का डोज रहता है वो, 100 ग्राम तुतिया डालते हैं और 1 लीटर बिस्लरी पानी डालते हैं और 500 ml विनेगर देते हैं।
1: अच्छा,
0: और ऐसे तैयार करते हैं और मतलब कि 3000 बच्चा के हिसाब से मतलब 100 ml करके डालते हैं, 100 ml 1000 बच्चा में डालते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो 4000 बच्चा रहता है, मतलब
1: 400 ml किसी भी बीमारी का जो संभावना होता है या अगर किसी को बीमार देख लेते हैं या स्वस्थ देख लेते हैं तो उसे आप कैसे पहचानते हैं? 4 से 5 या चूजा आपके पास है, मुर्गियां हैं, तो आप उसे कैसे
0: पहचानते हैं? काम करते वक्त कहीं कहीं वो अपना स्थायी रूप से खड़ा रहता है।
1: अच्छा अच्छा। कोई हरकत नहीं होता?
0: हरकत नहीं करता, दाना नहीं खाता है, पैर जो है उसको सूखने लगता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: इससे हमको पता चलता है कि बीमारी आ गई है। और मोटिलिटी होता है तो फिर उसको फाड़ के देखते हैं।
1: और उसके बाद जो है सो कभी कभी है कि उसका जो पैखाना है जो मल द्वार है उसका जो है सो गीला आना शुरू होता है, वो भी क्या एक संकेत है?
0: हाँ, वो भी संकेत है, इकोलाई का संकेत होता है। बीट जो है पतला करेगा, सादा सादा भी बीट करता है, हरा भी बीट करता है। उससे निमोनिया भी हो जाता है, सर्दी जैसे सर्दी आता था, अगर सर्दी का दवा टाइम पर अगर नहीं मिल पाता तो उसे निमोनिया भी धर लेता है।
1: अच्छा, तो उसके लिए आप क्या उपचार करते
0: हैं? उसके लिए भी स्प्रे करना पड़ता है, B904 का स्प्रे करते हैं, बायो बूस्टर भी मिला के स्प्रे करते हैं, बायो बूस्टर पिलाते हैं जिससे निमोनिया धीरे धीरे कम हो जाता है।
1: और ये भी देख लेता है कि बदलते मौसम में किसान बंधु जो मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं तो उनके पास परेशानियां कभी कभी होता है कि मौसम बदल गया या कभी बारिश हो जाता है अचानक, कभी बादल है, कभी बहुत ज्यादा धूप है, तो इससे होता क्या है कि मुर्गियों में बहुत
0: मेन है सर्दी,
1: सर्दी हो जाता है, जिससे सर्दी आने का क्या प्रभाव है, क्या कैसे उसको परखेंगे जो उसका नाक से पानी आना या आंख से
0: पानी, पहले बच्चा का आवाज साउंड आ जाएगा पूरा फार्म में।
1: अच्छा अच्छा।
0: छींकने लगता है।
1: हाँ हाँ।
0: इससे पता चल जाता है, छींक हमेशा आवाज चलते रहता है छींकने का, ये लोग उससे पता चलता है कि हमारे फार्म में सर्दी आ गया है।
1: हाँ हाँ।
0: तो B904 का स्प्रे करते हैं, अगर उससे नहीं होता है तो फिर बायो बूस्टर देते हैं।
1: अच्छा अच्छा। तो उसे देने का क्या विधि है, किस तरह से देते हैं?
0: वो भी पानी में ही देना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: पानी में देते हैं, मतलब 5 लीटर पानी में 1 ग्राम बायो बूस्टर देते हैं।
1: और सनी जी, जैसे जो मुर्गियां पूर्ण रूप से ग्रसित हो गई हैं तो उसे आप इसी फॉर्म में रखते हैं या फिर उसका उपचार अलग से करते हैं?
0: उसके लिए अलग बेड बना देते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: ब्रूडिंग उसको अलग करके उसमें थोड़ा सा ज्यादा देखभाल करना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: और बाकी मुर्गियों के लिए फिर तो टंकी में दवा डालते,
1: कारण कि अस्वस्थ होने के बाद जो है सो और मुर्गियों में फैलने का जो आशंका बन जाता है। तो लगभग आप उसे उपचार जब करते हैं तो कितने दिन में सुधार हो जाता है?
0: 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा। और अगर किसी तरह से अगर नहीं ठीक हो पा रहा है तो क्या आप अपने से उपचार करते हैं? उसके बाद कुछ मुर्गियां अगर ज्यादा बीमार पड़ जाए तो
0: डॉक्टर का टीम आती है?
1: अच्छा अच्छा।
0: डॉक्टर का टीम,
1: चिकित्सक को बुलाते हैं और टीम को बुलाते हैं। तो आपके पास जो 4 या 5 हजार मुर्गियां पाल रहे हैं आप, तो कितना दिनों में तैयार हो जाती हैं मुर्गी?
0: गर्मी के दिन में मुर्गियां हमारे 2 kg का साइज लेने के लिए 38 दिन ले लेती हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: और यही अगर ठंडा का मौसम रहे तो 35 दिन में तैयार हो जाता है। बारिश का मौसम में सबसे अच्छा, बारिश का मौसम में मुर्गी का प्रोडक्ट।
1: अच्छा। उसका लगभग क्या तय सीमा उसका है जो तैयार हो?
0: 35 दिन में 2 kg देता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: 35 दिन में 2 kg का साइज देता है।
1: तो आप जब इसे तैयार करते हैं तो ठीक उस शुरू से लेके 35 या 38 दिन तक आपके पास जो भोजन का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, दवा का जो व्यवस्था है, तो आप जो है सो अपने से देते हैं या फिर आपके पास कोई व्यवस्था है कि आप इसे मजदूर से करवाते हैं? इतने इतने
0: मजदूर भी, 2 मजदूर मेरे पास है।
1: हाँ हाँ।
0: 2 मजदूर है, खुद हम भी देखरेख करते हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो मजदूर के ऊपर छोड़ने से क्या लापरवाही हो जाती है।
1: तो आप कम से कम 24 घंटे में कितने बार देख रेख करते हैं ताकि जो है सो कभी देखा जाता है कि मुर्गियां सब इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होने के बाद जो है सो एक दूसरे पर भार हो जाता है तो कहीं कहीं उनको नुकसान होता है चलने फिरने या किसी भी तरह से, तो उसे आप साइड करने का क्या आपके पास व्यवस्था है?
0: गर्मी के दिन में मुर्गियां तो फाइल होकर बैठती है पूरे फार्म में।
1: हाँ हाँ।
0: ठंडा के मौसम में वो परेशानी होता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: ठंडा में ज्यादा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो उसको हीट बॉडी के लिए वो सब जमा हो जाता है और अगर नहीं देखभाल करते हैं तो जो नीचे रहता है वो दब जाता है, दबने के बाद मरता है, उसका मोर्टिलिटी होने लगता है।
1: तो आप 15 दिनों के बाद फिर प्रिया स्टार्टर के बाद कौन सा दाना का प्रयोग करवाते हैं?
0: प्रिया स्टार्टर के बाद फिर हम क्रम्स चालू करते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: वो थोड़ा सा प्रिया स्टार्टर से थोड़ा सा मोटा हल्का होता है, मोटा अनाज होता है।
1: अच्छा। तो वो आसानी से खा लेती है?
0: हाँ, वो आसानी से खा लेते हैं, वो हजम भी बढ़िया से फिर हो जाता है। क्या कि बड़ा बच्चा 15 दिन के बाद क्या है कि छोटा दाना खाने में उसको दिक्कत होता है।
1: हाँ हाँ।
0: ज्यादा देर तक चोंच मारना पड़ता है, इसके लिए दिक्कत होता है, उससे थोड़ा सा मोटा आता है क्रम्स। ये क्रम्स हमको 30 दिन तक चलाते हैं, उसके बाद आता है फिनिशर प्लेट।
1: अच्छा।
0: वो उससे भी मोटा रहता है, दानादार रहता है।
1: तो आप जब 38 दिन के बाद इस

0: कर्म को आप कितना दिन रेस्ट देते हैं, कितना दिन आप छोड़ते हैं ताकि फिर अगला लौट आप इसमें डाल सकते हैं, लगभग इसका क्या अंतराल रहेगा?
1: 20 दिन का अंतराल रखते हैं।
0: 20 दिन तक, मैंने आज अगर आप मुर्गी निकाल दी
1: है, आज मेरा सब निकल गई है।
0: हाँ हाँ,
1: इसको सफाई करने में 3 से 4 दिन लगेगा, उसके बाद फिर निपाई पोताई करके चूना से पूरा चूना छिड़क करके।
0: अच्छा, जो आप बेड जो दिए हुए हैं बालू का, उसका क्या करेंगे आप, ये हटा देंगे या फिर?
1: नहीं, इसको चेंज हर लोड में चेंज करना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: नया डालना पड़ता है। अभी ये तो अब बरसात आने वाला है, गर्मी के दिन में सिर्फ एक बार बालू डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: एक लोड में बालू डालते हैं, उसके बाद गर्मी खत्म हो जाता है।
0: अच्छा,
1: बारिश का मौसम अब आने वाला है तो फिर हम लोग कुन्नी पर छोड़ने लगेंगे बच्चा।
0: कुल मिला के आपके पास 5 दिन आपको साफ सफाई करने में रहता है
1: जी।
0: उसके बाद आप चूना का छिड़काव करेंगे या किसी दवा का स्प्रे करेंगे, 20 दिन में आप फिर इसे डालेंगे।
1: हाँ, 20 दिन के बाद।
0: तो साल में, एक साल में आप कितना बार इसमें कितना लोट मुर्गियां डालते हैं?
1: साल में 6 से 7 लोट हो जाता है, कभी कभी 7 हो जाता है, नहीं तो 6 लोट साल का रखता है।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे आप किसान बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि गर्मी का समय है, गर्मी के समय में किन किन बातों का ध्यान किसान बंधु दें ताकि उनके पास इतने बड़ा रकबा या इतने बड़ा क्षेत्र में मुर्गी पालन करते हैं, उनके लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे?
1: उनको हम यही कहेंगे कि अगर करकट सीट पे अगर 43-42 डालते हैं तो ठीक रहता है, उसमें क्या है कि फोगर लगाया हुआ रहता है तो पानी से हमेशा भींगते रहता है।
0: हाँ हाँ,
1: तो फार्म का टेम्परेचर बना के रखता है नॉर्मल।
0: अच्छा अच्छा,
1: टेम्परेचर कम से कम वही 32 डिग्री तक रखता है बना के पानी डालने के बाद।
0: हाँ हाँ,
1: जो मुर्गियों के लिए
0: श्रेष्ठ है,
1: श्रेष्ठ रहता है। और फिर भाई जाली के साइड साइड से सूतरी का बोरा लगवा देते हैं, और उसमें भी मेरा तो सूतरी का बोरा भी खोल दिए हैं।
0: हाँ हाँ,
1: एक माल निकल गया, बोरा खराब हो जाता है ज्यादा दिन लगा हुआ।
0: अच्छा,
1: सूतरी का बोरा लगवा देते हैं, पानी भी मरवाते हैं।
0: अच्छा, वो जो आप लटका रखे हैं इसका हवादार जगह में
1: जब
0: पानी का फुहारा मारते हैं तो ठंडा
1: ठंडा अंदर से ठंडा बना के रखता है टेम्परेचर।
0: संजय जी, आप हमारे किसान बंधु को बहुत अच्छा जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मुर्गी पालन आय का अच्छा स्रोत, बता रहे थे संजय कुमार यादव, जो कि ग्राम कर्मा प्रखंड मयूरहंट जिला चतरा के रहने वाले थे। इनसे हमारी ओर से बातचीत कर रहे थे यशमेंद्र कुमार यादव।
3: तो प्रकाश जी, अभी समय है एक हम लोग सुंदर सा एक किसान बंधुओं को गाना सुनाने के लिए।
4: मेहनत हम

0: हाँ तो श्रोताओं, अभी गीत भी हम लोगों ने सुना और अपने कार्यक्रम खेती बारी से अब जाने का वक्त भी हो चुका है। तो बता दें कि हमारा जो कार्यक्रम है किसानों के लिए और किसान भाई बहनों के लिए, एक हमेशा नई नई तकनीक नई नई जानकारियों के साथ अपने कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो हमेशा सुनते रहें अपना कार्यक्रम खेती बारी। इसी के साथ अपने दोस्त प्रकाश को
1: और हमें यशवेंद्र को
0: इजाजत दीजिए। नमस्कार।

सुन रहे थे खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: रहे श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा। राज्य में पेसा झारखंड नियमावली 2025 को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली में ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे। उन्होंने हर जिले में पेसा कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। देवघर के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी काम अधूरा ना रहे और हर योजना लाभुकों तक अवश्य पहुंचे। इसके लिए उपायुक्त ने जिला प्रखंड और पंचायत स्तर के सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने की हिदायत दी। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के अनुसार जहर खाने के कारण तबीयत खराब होने पर पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज में लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके परिजन की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

दोस्तों, आज के युवानों में मैं हूँ आपके साथ अनामिका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और शाम का समय है तो चाय तो हमारे कुछ दोस्त शायद पी चुके होंगे और कुछ पी रहे होंगे, है ना दोस्तों? ऐसा है, जिन्हें चाय की चुस्की पसंद है वे गर्मी का मौसम हो या कोई और, चाय तो पीते ही है। तो आप चाय का आनंद लीजिए, साथ ही सुनिए ये गाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं युवानी और आज के विशेष अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे पेय की जो हर सुबह को ताजगी देता है, दोस्तों की महफिल सजाता है और थकान को भी पल भर में दूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाय की। विश्व चाय दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं चाय का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ खास बातें। कहा जाता है कि चाय की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में हुई थी। एक कथा के अनुसार चीन के सम्राट शेन नून गर्म पानी पी रहे थे, तभी पेड़ की कुछ पत्तियां पानी में गिर गई। उस पानी का स्वाद और सुगंध उन्हें इतनी पसंद आई कि वहीं से चाय की शुरुआत मानी जाती है। धीरे धीरे चाय चीन से जापान और फिर दुनिया के कई देशों तक पहुंची। भारत में चाय का प्रचलन अंग्रेजों के समय बढ़ा। असम और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चाय की खेती शुरू हुई और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में गिना जाता है। दोस्तों चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और भावनाओं का हिस्सा बन चुकी है। घर में मेहमान आए, दोस्तों से मुलाकात हो या काम के बीच थोड़ा आराम चाहिए, एक कप चाय हर मौके को खास बना देती है।

0: दोस्तों, विश्व चाय दिवस हमें चाय किसानों और मजदूरों की मेहनत को सम्मान देने का भी अवसर देता है, जिनकी बदौलत यह स्वाद हमारे कप तक पहुंच जाता है। तो आइए इस खास दिन पर चाय की हर चुस्की के साथ मेहनतकश लोगों का धन्यवाद करें और अपने अपनों के साथ बिताएं कुछ प्यारे पल। दोस्तों, शुरुआत में चाय कोई आम पेय नहीं था, बल्कि चीन में एक औषधीय दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बौद्ध भिक्षु ध्यान के दौरान जागते रहने और एकाग्रता के लिए इसका सेवन करते थे। 16वीं और 17वीं सदी में पुर्तगाली और डच व्यापारियों ने चाय को यूरोप तक पहुंचाया। ब्रिटेन की महारानी कैथरीन ने इसे शाही दरबार में ड्रिंक के रूप में पेश किया, जिसके बाद यह ब्रिटेन में अमीरों का स्टेटस सिंबल बन गई। भारत में चाय की शुरुआत हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत में चाय की खेती शुरू करने का फैसला किया। 1820 से 30 के दशक में अंग्रेजों ने असम की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र घाटी में जंगली चाय के पौधे की खोज की। शुरुआती दौर में भारतीय लोग चाय नहीं पीते थे। फिर अंग्रेजों ने फैक्ट्रियों, खदानों, रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले मजदूरों की थकान मिटाने के लिए मुफ्त चाय पिलानी शुरू की, जिससे भारत में चाय पीने का चलन जोर पकड़ने लगा। और अब हम कार्यक्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बच्चों में गणित विषय की समझ कैसे विकसित करें, आइए सुनते हैं ये बातचीत। कैसे कठिन विषय को खेल खेल में और रोजमर्रा के उदाहरणों से बच्चों के लिए गणित विषय को आसान बनाया जाए, आज सुनवा रहे हैं आज के कार्यक्रम में आपको ये बातचीत पुनर्प्रसारित है।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना कि रास्तों की अगर सही जानकारी है तो मंजिल मिल ही जाती है। उसी तरह से अगर हम देखें तो गणित विषय के बारे में कि अगर उसके बारे में सही तरीका, सही रणनीति की जानकारी हो तो गणित बोझिल नहीं, एक रुचिकर विषय है। गणित को हम कैसे बेहतर तरीके से आत्मसात कर सकते हैं, गणित को लेकर कैसे हम भविष्य गढ़ सकते हैं, इन तमाम विषयों पर आज बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं शिक्षक, जिला स्कूल प्लस टू के शिक्षक हैं गिरीश कुमार रजक जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं गणित के बारे में, और परीक्षाओं की भी शुरुआत होने वाली है तो हम जानेंगे कि गणित की तैयारी बच्चे किस तरह से करें। 10th और 12th की परीक्षाएं होने वाली हैं जी, तो इस विषय को लेकर कि चूंकि अभी एक ऐसा दौर से भी हम लोग गुजरे हैं जब कोविड का दौर पूरा चला, बच्चे घर में रहें और जिस रूप में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए उस रूप में नहीं हो पाई है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं ग्रेसी। तो सबसे पहले आप बताइए कि इस माहौल में बच्चों को किन बातों की जानकारी होनी चाहिए और किस तरह की सतर्कता बरतें और किस तरह से वो अपनी पढ़ाई करें।
2: जी, आपने सही कहा कि मैथमेटिक्स जो है सो कोई बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं है, उसको

0: देखने का सिर्फ नजरिया लोगों में अलग अलग है। हम मैथमेटिक्स जो है कि एक दिनचर्या वाला विषय है, जिसको हम डेली सोने के साथ सोते हैं, उठने के साथ उठते हैं। हम देखें तो ये कहा जाए कि मैथमेटिक्स हमारे जीवन के साथ साथ चलता रहता है शुरू से ही। आज हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें मैथमेटिक्स जो है रचा बसा हुआ है। तो बच्चों को ये कभी नहीं डरना चाहिए कि मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देखें। इसको जैसे हम लोग दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, बस उसी के अनुसार समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। तो इसलिए इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर ना लेकर के एकदम इसको इजी वे में लें और समझें कि जो हम डेली सब्जी खरीदने जाते हैं, दुकान जाते हैं, मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, तो ये गन्ना ही तो मैथमेटिक्स है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसके अनुसार हमको समझना चाहिए कि सबसे पहले हम जो कंसेप्ट 6 क्लास से ही लोगों को लेना चाहिए। इसमें दिक्कतें हम जो अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें दिक्कतें ये आई हैं कि बच्चे जब 9th में एडमिशन लेते हैं, 10th में आते हैं, यहाँ तक कि हम 11 में जब आते हैं बच्चे, तो हम क्या क्या कमजोरियाँ हैं वो हम थोड़ा सा गिनाना चाहेंगे आपको कि कंसेप्ट बच्चों में नहीं रह पाता है। हम लोग के दौर में था कि कंसेप्ट कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल रटने वाला चीज़ नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ मैथ्स में नहीं, वो हर एक सब्जेक्ट में है। जब तक उस चीज़ों को हम दिमाग में नहीं लाएंगे तब तक वो हमको बोझिल लगेगा। तो सपोज करिए, जैसे हम देखे हैं बच्चों में क्या कठिनाई आती है कि हम अगर किसी भी चीज़ का, हम अगर मान लीजिए एरिया वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अगर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, तो हम वॉल्यूम अगर कोई दिया हुआ है, उसका भुजा दिया हुआ है, उसमें आयतन निकालना है, तो बच्चे निकाल लेते हैं। लेकिन वही चीज़ को अगर पलट देता है कि हम अगर घन का हम दे दिए हैं कि आयतन है, हाँ दिया हुआ है, और अगर उसको भुजा निकालना है, तो बच्चों में क्यूब रूट नहीं आता है बच्चों को। तो ये सब, ये बेसिक चीज़ें जो है सो एक तो साथ साथ चलना चाहिए, जो 6-7 क्लास से ही बच्चों को ध्यान देना चाहिए, तो वो सब जो है सो चीज़ें आ जाती हैं। इस टाइप से मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए कि डायरेक्ट आप बुक लेकर के उसका सीधा सीधी हम की न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही उसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो आते हैं वो हमारे लिए नए होते हैं, जो हमको बहुत चीज़ समझ में नहीं आती बात। तो शिक्षकों से या अभिभावकों से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो जो चैप्टर्स जैसे स्टार्ट करें तो उससे रिलेटेड जो दैनिक जीवन में जो वस्तु हम यूज करते हैं उसके बारे में बच्चों को जरूर बताना चाहिए। उससे बच्चों में एक कंसेप्ट क्लियर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हम बच्चों में कहाँ दिक्कत होती है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो हम देखते हैं कि बच्चों में कि वो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो अब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कर्व्ड सरफेस क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो ये सब इस तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों को है कि सबसे पहले अब उस चीज़ का, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि अगर हम देखते हैं कि कोई कोण है, शंकु है, तो उसको अब कर्व सरफेस एरिया, तो हम उसको डायरेक्ट किताब में ले जाएंगे कि कर्व का कोण का आयतन जो होता है सो इतना होता है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना, तो रटने का कोशिश करें तो स्वाभाविक बच्चे भूल जाएंगे। सबसे पहले बच्चे ये कंसेप्ट लें कि उसका वक्र पृष्ठ क्या है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो एक साधारण सी बात है कि हर एक घर में कोन शेप का हम आइसक्रीम खाते हैं, कीप तेल डालने वाला रहता है, तो ये सब चीज़ों को उठा करके वो देखें और उसको कर्व क्या है, टोटल सरफेस क्या है, ये सब के बारे में वो पहले क्लियर हो जाए, तो वहाँ से एक कंसेप्ट बनता है। अब अगर हम चैप्टर में जाते हैं और उस चीज़ों को जानते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमको इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर रहा है जिसका आंसर हमको करना है। डायरेक्ट हमको बुक में जाने से थोड़ी सी परेशानी होती है, तो बच्चों में से ये सब जो पीछे के जो चीज़ें हैं उनको हर हालत में जो है सो याद रखना चाहिए और उस फिगर को देखें, समझें किनारा क्या होता है। बहुत बच्चे जो हैं सो अब किनारा क्या है, उसका सरफेस क्या है, तो ये सब चीज़ें जो हैं सो घर में जो इक्विपमेंट्स हैं छोटी छोटी, माचिस का डिब्बा आयतन हो गया, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसका डाइस जो है उसका ये घन का काम करता है, तो वो सब फेस देख करके वो समझें कि ये सब चीज़ें क्या हैं, धन घनमूल। सबसे बड़ी चीज है कि आप

0: देखिएगा या छोटी छोटी चीजें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन हम एक बार पढ़ा रहे थे, यहां तक 11 का बच्चा भी आता है, अगर उसको 14x6 आ गया एक बार कैलकुलेशन बीच में, तो 14x6 को मल्टीप्लाई करने के लिए वो मोबाइल निकाल के मल्टीप्लाई करता है या तो फिर कॉपी में मल्टीप्लाई करेगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ समझ मैथमेटिक्स समझने के चीजों के साथ साथ कुछ ऐसा दिमाग में होना चाहिए कि कुछ चीजें हमको याद रहनी चाहिए और ये अभ्यास में रहना चाहिए। और ये जरूरी है कि अभ्यास में ये याद आपको कब रहेगा कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस जरूर मांगता है। ये मैं बच्चों से कहूंगा कि ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, कंसेप्चुअल चीजें जो हैं, वो जो दैनिक जीवन में उस चैप्टर से रिलेटेड है, उसको आप देखें, हाथ से छू कर देखें, सामने से देखें। डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल्स और किताब में ना जाए, आपको मैथमेटिक्स बहुत ईजी लगेगा। और ये सब देखने के बाद फिर आप न्यूमेरिकल्स में जाएं, जो छोटी छोटी एक टाइप के सवाल हैं उनको अभ्यास करें। जो अभ्यास करने के बाद आप हम देखें कि कुछ लड़के हम एक थ्योरी बता दिए उससे रिलेटेड सवाल बनाने लगे, बन जाता है, दूसरा सवाल लिए चार लाइन आगे बढ़े फंस गया पांचवा लाइन में। तो ये चीज जो जहां फंस जाती है बात, वहां आप हाईलाइट करिए। हाईलाइट करने के बाद क्या हुआ कि उसको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिए कि इस चीज में हम अटके थे, ये क्या चीज है, हम क्यों यहां फंसते हैं, उसको रियलाइज करिए। इससे क्या होगा कि उस चीज पर आपका ध्यान अट्रैक्ट होगा और उस चीज आपका फिर धीरे धीरे दो बार तीन बार में आपको क्लियर हो जाएगा, जो हमेशा याद रह जाएगा।
1: और गृह से हम लोग बातचीत करते हैं, मैथ के बारे में जो चर्चा हो रही है, तो फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला की बात आती है, तो बच्चे यहाँ भूल जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण?
0: इसके पीछे कारण है कि बच्चे इसको डायरेक्ट रटना शुरू कर देते हैं। हम जैसे आप प्लस टू के बच्चों की बात करते हैं कि जैसे हम कैलकुलस पढ़ाते हैं, तो कैलकुलस जो है सो उसका जो है सो सबसे पहले मान लीजिए कि इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो उसके पहले डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए, उसका सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके पहले जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं उसका सारा, चूंकि मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर लिंक है एक दूसरे से, और हम अगर एक क्लास भी मिस करेंगे तो हमको अगला क्लास एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों से कंटिन्यूटी हम जरूर अपेक्षा करेंगे, कंटिन्यू रहें और कोई भी टॉपिक्स को कमतर नहीं आंकना है, हर एक चीज को आप रिलेट करके पढ़िए। तो फॉर्मूला की जो बात आती है कि भूल जाते हैं, उसमें एक ही चीज हमारे दिमाग में, हम भी थे अपने जमाने में, उस समय हम भी भूलते थे, तो उसको जो है सो आप एक बार नहीं, दो बार तीन बार लिखिए। मैथमेटिक्स को कभी याद करने का कोशिश मत करिए, उसको जब भी करिए तो पेपर और पेन लेकर के बैठिए और उसको फॉर्मूला को लिखिए। अब उससे रिलेटेड सवाल बनाइए, वो फॉर्मूला अगर आता है बीच में तो फिर से लिखिए बगल में दाहिना साइड में, आप फॉर्मूला को लिखिए और फिर वहां आगे बढ़िए बनाते हुए, देखिए आप कभी नहीं भूलिएगा।
1: मतलब ये तरीका अपनाया बच्चे, अब
0: हाँ अपना अगर इस टाइप से बनाया जाए कि लिख के, अब जैसे हम फॉर्मूला रट जाते हैं तो वो उस टाइप का बहुत सारे फॉर्मूला है जो हमारे दिमाग से वो मिक्स हो जाता है।
1: और किताबों की चर्चा करें तो जैसे कुछ एनसीईआरटी की किताबें हैं
0: जी,
1: राज्य सरकार की किताबें, टेक्स्ट बुक, साइड बुक की भी चर्चा होती है, तो इन किताबों को किस तरह से अध्ययन में अपना शामिल करना चाहिए?
0: किताब में कहा जाए तो एनसीईआरटी जो है सो बेस्ट बुक है, वो बहुत कंसेप्ट क्लियर करता है और उसमें डिफरेंट कम सवाल है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसमें न्यूमेरिकल्स डाले हुए हैं, जो हमारे सारे टाइप्स के सवालों का वो निचोड़ है। बाकी आप उसको बनाने के बाद अगर आप साइड बुक बनाते हैं तो बहुत सुंदर है, और साइड बुक में भी उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है तो उसको आप बना सकते हैं। आर डी शर्मा की किताब है, आर एस अग्रवाल की किताब है, ये सब सारे किताबें जो हैं सो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, आप बनाइए।
1: और दूसरे विषयों के बीच में गणित को पढ़ना, मतलब उसके लिए कितना समय बच्चों को देना चाहिए?
0: गणित के लिए तो पर डे अगर देखा जाए तो 1.5 घंटा समय हमारे विचार से बच्चों को जरूर देना चाहिए,
1: 10th और 12th दोनों के।
0: हाँ 10th और 12th दोनों के लिए, और अगर अभी एग्जाम अगर सामने हो सके तो आधा घंटा एक घंटा और बढ़ा देना चाहिए, 2 से 2.5 घंटे,
1: 2 घंटा उसमें बढ़ा,
0: हाँ उसमें बढ़ाना चाहिए।
1: और जैसे बात करें तो बच्चे कहाँ किस चैप्टर में ज्यादा है, तो कौन सा चैप्टर है ज्यादा जहाँ जटिल होता है और जहाँ बच्चों को वहाँ खास सावधानी बरतने की जरूरत?
0: हाँ ये हम देखें कि हर एक बच्चा में जो है सो कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। कोई बच्चे जो है सो सभी बच्चे एक चैप्टर में अटकते हैं ऐसा नहीं है, कोई बच्चे जो है सो ज्योमेट्री में ज़्यादा अटक जाते हैं, उनको थोड़ा सा टफ लगता है, तो ज्योमेट्री में टफ लगने का कारण वही है कि वो डायरेक्ट गए और न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कर दिए, उसके पीछे क्या थ्योरी है, उसके पीछे क्या हमारा जो दैनिक जीवन से उस चीज़ वस्तुएँ जो जुड़ी हुई हैं उनको देखिए। हम

0: जानते हैं, स्क्वायर। अब हमको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट के बारे में पता नहीं है। अभी जैसे हम बताया कि घन अगर आयतन का ये दिया हुआ है तो भुजा दिया हुआ है तो आयतन हम निकाल लेता है भाई चलो, लेकिन अगर आयतन दे दिया और भुजा निकालनी तो उसका उसको घनमूल पता नहीं होता है। तो इस टाइप की चीजें जो है सो छोटी छोटी चीजें जो है सो बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है जो पीछे से क्लियर होना चाहिए। तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग चैप्टर में डॉट्स रहते हैं जो प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा ही इसको दूर किया जा सकता है।
1: और जैसे एक आम धारणा भी बनी हुई है बच्चों में भी और अभिभावकों में भी कि एक अलग से भी पढ़ने की कुछ खास जरूरत है स्कूल में या स्वाध्याय में, दोनों में कितना हम इसका मतलब फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से पढ़े?
0: हाँ, ये मस्ट है सर कि बच्चों को सेल्फ जो स्टडी है स्वाध्याय जो है ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप स्कूल में कितनों भी बच्चे कर लेंगे तो अगर उसी चीज को हम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो फिर वही चीज है कि हम लगेगा कि हमको कि वो हमारा हमसे बन जाएगा। लेकिन जब हम बनाने बैठते हैं, बच्चे बनाने बैठते हैं तो तीन चार स्टेप जाता है, फिर पांचवा स्टेप छठा स्टेप में बच्चे रुकने लगते हैं। तो वही चीज को हाईलाइट करना है स्वाध्याय के द्वारा। अच्छा। और वही जो हाईलाइट करके जो है सो उसको अगर अपने से वो कैलकुलेशन करेंगे तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और वे ज्यादा दिनों तक याद रहता है।
1: और गृह जी एक अंतिम सवाल आपसे, जैसे सोशल मीडिया का दौर है
0: जी।
1: और खास करके कोरोना काल में देखें कि ये का बहुत बड़ा साधन बनकर उभरा कि बच्चों को अध्ययन अध्यापन में भी बड़ा सहयोगी रहा, तो इसकी क्या सीमा है, किस सीमा तक हम यहाँ हम उपयोग कर सकते हैं?
0: इसकी संभावना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहाँ कि हमारे जो बच्चे हैं कुछ पुअर फैमिली से आते हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, किन्हीं के पास रिचार्ज कराने के पैसे। अभी हम लोग इसी दौर में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, लेकिन अभी तक 60-70% बच्चे को ही जोड़ा जा सका ऑनलाइन क्लासेज में। आज जितने लोग जुड़े भी वे भी या तो नेट का प्रॉब्लम रहा या तो फिर मोबाइल नेट डिस्टर्ब, वही कहिए कि नेट डिस्टर्ब रहा, जिसके कारण बच्चे जो है सो नहीं कर पाते थे। तो हम लोग के पास कंप्लेन आता था कि सर हम देख रहे थे वीडियो तो बीच में रुक गया, फिर वहाँ के बाद क्लियर नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इसके लिए फिर एक तरीका निकाला कि भले वो बहुत ज़्यादा पहले हम लोग को सोचना चाहिए था कि, लेकिन ये फिलहाल पिछले 2-2.5 महीने से हम लोगों ने निकाला कि अब बच्चों को जो डीजी साथ वगैरह जो सरकारी योजना चल रही थी वो भी बहुत हद तक सफल रहा है, लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़ पाए उनके लिए तो ये अभिशाप के जैसा ही था, और जो जुड़ पाए उसमें से किन्हीं को समझ में नहीं आया कि नेट प्रॉब्लम से वो बीच में रुक जाता था, चल नहीं पाता था। तो हम लोगों ने फिर से कुछ बच्चों को बुलाया, फिर घर घर जा करके जो है सो या टोला क्लासेज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 7-8 बच्चे का ग्रुप बना करके उसको हम लोगों ने करवाया, और जहाँ तक हो सके हम लोग बहुत कोशिश किए हैं कि बच्चे पढ़ें, डॉट्स क्लियर करें। वे फोन करके भी पूछते थे, हम तो फिर बाद में क्या किए कि सॉल्यूशन बना करके और उसको व्हाट्सएप में डाल देते थे कि तुमको जहाँ दिक्कत हो इस सॉल्यूशन में थ्योरी में वहाँ फिर तुम अंडरलाइन करना और फिर मेरे पास भेजना, फिर उसको हम रिप्लाई करते थे, फिर फोन करके समझाते थे। कुछ बच्चे फोन करते थे, उनको फोन के द्वारा समझाया जाता था। इसके बाद कुछ बच्चे फिर अब तो स्कूल खुल गई है तो अब स्कूल आने लगे हैं बच्चे डॉट्स क्लियर करने के लिए, भले अभी तक संख्या बहुत ज्यादा नहीं जुड़ पाए, संख्या नहीं आ पाई बच्चों की।
1: तो चलिए गृह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छी बातचीत हुई और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को इस बातचीत से जरूर फायदा होगा। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: गणित विषय की सही समझ कैसे विकसित करें, इस विषय पर ये बातचीत आप सुन रहे थे दोस्तों। गिरीश कुमार रजक से बातचीत कर रहे थे सूरज रजक, और इसी के साथ आज के कार्यक्रम युववाणी से दीजिए अपने दोस्त अनामिका को अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: यह है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: चल रहा है कार्यक्रम फिल्म संगीत, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुन रहे हैं अगला गाना लम्हे फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।

कुमार सानू, सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये था आंखें फिल्म का गाना। और अब सुनवा रहे हैं आपको अभिमान फिल्म से अगला गाना, आवाज किशोर कुमार की।

किशोर कुमार की आवाज में अभिमान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे हैं और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की कड़ी में शाम के 6:55 से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आज कल प्रसारण होगा हमारे रांची केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सुधार के लिए लागू किया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। राज्य में पेसा नियमावली 2025 को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए आयोजित की गई दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट जामताड़ा के देवासी हेमब्रम को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। और जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए की गई भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के दो खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लागू किया गया है।
2: हम जब से इस राज्य में काम देख रहे हैं, हायर एजुकेशन के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। ये कहते थे कि अब टू इंटर तो पढ़ाई अच्छी है। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन में, सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा।
3: 30 जून से 29 जुलाई तक है, इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगी। वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा, मतलब उसका साथ में करेंगे, उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी। नया वोटर 30 जून से ही एप्लीकेशन दे पाएंगे। किसी भी एक भी भारत नागरिक, उनका 18 उम्र हो गया, वो झारखंड में रहता है, उनका नाम जरूर आएगी। उनके लिए हम लोग सभी जगह पर ईआरओ, एईआरओ, एडिशनल एईआरओ, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, वॉलंटियर्स आपका मदद करेंगे।
1: राज्य में पेसा झारखंड नियमावली 2025 को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली से ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे। उन्होंने हर जिले में पेसा कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।
4: पेसा अधिनियम को पारित किया गया, इस पर सरकार बहुत ही गंभीरता से आगे बढ़ रही है। विभाग के सभी लोग और जिला प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी जो शेड्यूल एरिया से जुड़े हुए हैं पूरी तत्परता से इस काम को कर रहे हैं। जो पारंपरिक ग्राम सभा के हेड्स होंगे उन लोगों की नियुक्ति वो जारी है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए यह बहुत संवेदनशील है और हम लोग इसको कैसे बेहतर कर सकें इसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50

0: यात्री रहेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं को गंभीरता से लिया गया। इस बैठक में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और परिचालन सुरक्षा में सुधार करने पर भी जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ 426 मामले दर्ज हैं। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
1: मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
0: कोल्हान के सारंडा में सक्रिय 25 से अधिक नक्सलियों के एक साथ समर्पण करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
2: आज सरकार की नजर, सरकार की आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे, और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं।
0: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज सांसद कालीचरण मुंडा के आवासीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद कालीचरण मुंडा और जिला प्रभारी चौतो उरांव विशेष रूप से उपस्थित थे। मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप और गर्मी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने बोकारो, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघगर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम ने थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज उन्हें विधानसभा में सम्मानित करते हुए कहा कि प्रतिभा कभी गरीब और अमीर में फर्क नहीं करती।
3: हमारी झारखंड की बेटी, देश की बेटी देवासी थाईलैंड में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आया है। ये हम सबों के लिए एक गौरव का क्षण है। ये मेधा कोई गरीब और अमीर को पहचान के नहीं होता है। आज भी वैसे मेधावी हर जगह उपस्थित, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है समाज को, सरकार को, सारे लोगों को ऐसे मेधा को ढूंढ निकालना।
0: हॉकी इंडिया ने 29 मई से 6 जून तक जापान के काकामिगाहारा में होने वाले पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड के दो खिलाड़ी आशीष तानीपुरती और प्रेमचंद सोई को जगह मिली है। उनके चयन पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग ने पूरी टीम को बधाई दी है। अंत में

यह समाचार एक बार फिर। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सुधार के लिए लागू किया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। राज्य में पेसा नियमावली 2025 को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए आयोजित की गई दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। और जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए की गई भारतीय टीम की घोषणा। झारखंड के दो खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से करीब 107 करोड़ की लागत से हजारीबाग शहर की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत माता चौक से लेकर सिंदूर बाईपास तक लगभग 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का पूर्ण निर्माण किया जाएगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बताया,
2: उसको भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और ये जो एरिया है आज पूरा हजारीबाग आप देखिएगा तो आकर के इसी से कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं पर, तो यहाँ से लेकर के नदवा तक तो जितना बाईपास हुआ है इस फोर लेन से लेकर उस फोर लेन तक अभी किया जा रहा है, 10 किलोमीटर का है और लगभग 100 करोड़ की ये जो है योजना है।
1: हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में सड़क यातायात सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी बैजनाथ कामती बताते हैं,
3: पूरे देश में 600 जिलों में घूम घूम कर वहाँ के जो लोकल प्रशासन से मिलकर एक अभियान चलाते हैं, उसी तत्वाधान में ये लोग आज शनिवार से ही यहाँ पर हैं। डिस्ट्रिक्ट मोड पर ये कार्यक्रम था, उसी में हमारा परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा जो हेलमेट है, सीट बेल्ट है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, कैसे रोड पर चले, क्या नियमों का पालन करें, यही सब की जानकारी लोगों को दी गई और फाइन भी काटा गया। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले 2-3 सालों में जहाँ लोग जीरो हेलमेट पहनते थे अब परिवर्तन आ रहा है, आने वाले समय में 100% लोग हेलमेट जरूर पहने।
1: का सबसे गर्म बरकट्ठा सूर्यकुंड को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने क्षेत्र भ्रमण किया है। क्षेत्र भ्रमण करने के बाद हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती ने बताया,
4: सूर्यकुंड को अभी जिस जिला परिषद के द्वारा उसको संचालन किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है जिसमें लगभग लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, तो स्थानीय लोगों के साथ और वहाँ के मुखिया प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी के साथ मिलकर के ये कुछ बातें तय हुई है जिसमें हम लोगों को वहाँ पर बहुत सारे कार्यों को कराया जाना है ताकि और पर्यटक आ सके और पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर वो अपनी जगह बना पाए। इसके अलावा पाताल लोक धाम का भी भ्रमण किया गया। यहाँ पर किसी भी विषम परिस्थिति में भी यहाँ पर 24/7 बहुत ही अच्छा पानी आता है कि सभी लोग यहाँ से पानी पीते हैं और इस पानी की अपनी एक ऐतिहासिक मान्यता है। हम लोगों के द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस चीज़ को भी संज्ञान में लाया गया है और जो बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों को यहाँ पर ठीक कराया जाएगा। स्नान घाट बनाया जाएगा, इसके अलावा चेंजिंग रूम बनाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की खपत कम करने के आह्वान का देश में तत्काल और व्यापक असर दिखा है। हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद राणा चार पहिया वाहन छोड़कर मोटरसाइकिल से कार्यालय आना जाना शुरू किए हैं। इनका कहना है
5: कि जहां तक हो सके हम लोगों को बचत करनी चाहिए, विशेषकर वैसे संस्थानों पर जो हम आयात करते हैं पेट्रोल सोना आदि आदि। तो मैंने तय किया है कि जहां कहीं संभव हो अपने वाहन से चलूं, हमारे सुरक्षा कर्मी हमारे साथ चलते हैं। क्षेत्र भ्रमण भी आज से बाइक से ही कर रहा हूँ और काले हम इसी से आ रहे हैं। राष्ट्र बचाने के लिए तेल नहीं, राष्ट्र रहेगा तो मेरा हम रहेंगे, हमारा समाज रहेगा, मैं महापौर रहूंगा। तो राष्ट्र महत्वपूर्ण है और राष्ट्र उत्थान के लिए, राष्ट्र के लिए हम सबों को, हर भारतवासियों को राष्ट्र प्रथम मानकर काम करना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जब भी इन्होंने देश हित में लोगों से आह्वान किया तो लोगों ने उनकी अपील का स्वागत किया है। कुछ ऐसा ही नजारा हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
0: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

विशेष एवं संगीत का कार्यक्रम झनकार। श्रीधर और कविता सेठ की आवाजें हैं और फिल्म का नाम कॉकटेल।

कल आपने शंकर महादेवन और विनोद राठौर की आवाजों को आप सुन रहे थे फिल्म द चाइना टाउन। और अब प्रोग्राम का अगला गाना चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गाना है सुनिधि चौहान, नीति मोहन और अरिजीत सिंह की आवाजों में।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी देर।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्म संगीत का प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स। अलका याग्निक और पंकज उदास की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।

आकारने कौर साथियों को आप सुन रहे थे। इस गीत में फिल्म था छुपा रुस्तम। और अब अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम चालबाज़।

चाइनीज फिल्म का ये गाना था अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। कार्यक्रम है ऑल टाइम हिट्स और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गाना अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाजों में। फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

ये था सदाबहार फिल्म संगीत का प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार, मैं हूँ अनामिका। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी चाहत में, जहाँ बजते हैं आपकी पसंद के गीत और जुड़ती है दिलों की खूबसूरत फरमाइशें। आपकी पसंद, आपके संदेश और आपके प्यार से सजा ये सफर हर बार बन जाता है और भी खास। तो तैयार हो जाइए कुछ मधुर गीतों और प्यारी यादों के साथ एक खूबसूरत संगीत यात्रा के लिए।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गाना था सरस्वती चंद फिल्म से, और इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने भादोड़ी जमृत लैया से, उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शम्मी, अपराजिता और इनके परिवार के अन्य सदस्य, और दिल्ली शहर मोरी गेट से आप है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। और अब कार्यक्रम आपकी चाहत में आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में पराया धन फिल्म से लिया हुआ ये गाना, और इस सुनना चाहा है आप सभी ने। उन लिसनर ग्रुप मगनपुर से आप हैं अमजद अली अब्बास आलम, और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, साथ ही सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप है कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान और इनके ढेर सारे साथी।

और अब दोस्तों कार्यक्रम आपकी चाहत में ये अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में आन मिलो सजना फिल्म से और पसंद किया है इस गीत को नंबाडी हरली से आप हैं उमेश चंद्र पांडे शंभू चंद्र अनिल चंद्र साकेत शुभम नर्मदा पांडे अक्षता प्रियंका शमी अपराजिता अपूर टुकू और इनके परिवार के अन्य सदस्य और अगला खत है सरगुजा मैनपाट से आप हैं सोनिया सोनम रेशमा आदिबा लोनी से परवीन सरफुद्दीन कुमारी डब्लू और इनके ढेर सारे साथी और मथुरा जेल रोड से वसीम आसमा बेलदार अक्रम आसमा उल्ला आसमा और इनके ढेर सारे साथी

ये था ईश्वर फिल्म से लिया हुआ गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर, और अब सुनवा रहे हैं आपको कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। प्रोग्राम का ये अगला गाना सुनना चाह है जगन्नाथ प्रसाद साहू है, जो मृतलैया से, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू और ग्राम कुर्ती से बुधू गागराय, जितेंद्र साधु, पीताम्बर नंद किशोर, जो जो कुर्मा से आप है, मनोज गागराय, बासंती सोनाली रचना और इनके ढेर सारे साथी, सम्राट चौक शिरपुर जैन से आप हैं गिरीश, सोनाली, आरव, विपिन, रेणुका, अश्विनी और इनके परिवार के अन्य सदस्य।

आकाश का गुंडाराज इस फिल्म का ये गाना था। और अब अगला गाना आपको सुना रहे हैं आग और शोला फिल्म से, और सुनना चाहे आप सभी ने रेंज ऑफ इस बरही से। आप हैं वासुदेव मालाकार, संगीता देवी, अनुपमा कुमारी, अंजलि कुमारी, गंगा मालाकार और ज्योति कुमारी और इनके ढेर सारे साथी। दलाई किला पदमपुर से आप हैं गीता, सरिता, लक्ष्मण और इनके अन्य दोस्त। मानगढ़ से मिथिलेश पांडे, बबीता देवी, नीतू कुमारी, अंशु कुमार पांडे, सुधांशु कुमार पांडे, अभिषेक और इनके परिवार के अन्य सदस्य आप सभी हैं। मानगढ़ चौपारण से

और दोस्तों आज का ये कार्यक्रम आपकी चाहत यहीं तक, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपकी चाहत, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। रात के 8:44 और 30 सेकेंड, थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे अंग्रेजी समाचार न्यूज़ @9, 9:15 पर स्पॉटलाइट प्रसारण होगा हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने

0: और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल

इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये है विविध भारती।
1: आज की फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है, और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: की शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 10 बजे हैं।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों को आपने सुना इस गीत में। फिल्म था आन मिलो सजना। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, जहां संगीत की मधुर खुशबू लेकर हम आए हैं इस प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसे ही गीत सुनाने। सुनिए प्रोग्राम का अगला

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों को आप सुन रहे थे। इस गीत में फिल्म था जुआरी, और अब सुनवा रहे हैं आपको अगला गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी।

आज है निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा का जन्मदिन। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं यशराज बैनर के तले बनी कुछ चुनिंदा फिल्मों की गीत।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म से लिया हुआ गाना आपने सुना लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें थी। और अब अगला गाना सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज, फिल्म का नाम है धूम।

महापति फिल्म से लिया हुआ ये गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, और अब सुखविंदर सिंह की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको प्रोग्राम का ये अगला गाना। फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी।

फनी फोन का ये गाना आप सुन रहे थे शान और कैलाश खेर की आवाज में, और अब लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको दिल तो पागल है फिल्म से लिया हुआ ये गाना।

इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम आज के फनकार यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। रात के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं।

0: हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।